मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ हैं आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहाँ या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष

0: 2026 का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशगान से।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे रतन मोहन शर्मा की लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ज्योथिका रॉय के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे जूथिका रॉय केसवर में ये भक्ति गीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण केसवर में ये भक्ति रचना।

0: जगजीत सिंह और साथियों ये गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन में विवेक विषय पर ब्रजेश श्रीवास्तव के विचार। वाचक स्वर है राजेंद्र कुमार का।
1: हमारे सामने अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम भलाई बुराई, भ्रम और सच्चाई, उपयोगी अनुपयोगी, कर्तव्य और भावना, इनको अलग अलग नहीं कर पाते, क्योंकि ये कई बार आपस में इतने गुथे हुए होते हैं कि हमारी बुद्धि संशय में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा विवेक ही साथ देता है और हम इन दोनों को अलग अलग करने में सफल हो जाते हैं, और तब बुद्धि के निश्चयात्मक रूप ले लेने से हम सही निर्णय कर लेते हैं। ये विवेक क्या है? संस्कृत में विवेक के मायने हैं विचर पृथग भावे विवेचनम, अर्थात अलग अलग कर सकने की योग्यता, जिसे हम कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना या नीर छीर विवेक वाली बुद्धि। पर विवेक का मतलब दो विकल्प में से एक का चयन करना नहीं, क्योंकि विवेक के सामने दो या अधिक विकल्प अलग अलग नहीं होते, बल्कि आपस में इतने उलझे हुए होते हैं कि ये निश्चय ही नहीं हो पाता कि भला क्या है और बुरा क्या है। यद्यपि कुछ साधारण बातों में विकल्प स्पष्ट भी होते हैं। अंग्रेजी विवेक का पर्याय है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये विवेक बुद्धि के माध्यम से काम करता है। बुद्धि का काम है किसी भी बात का विश्लेषण करना, इसलिए ये सदैव अनिश्चय और निश्चय के बीच बनी रहती है। विवेक इसे निश्चयात्मक बनाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है पर उसमें विवेक की कमी है तो वो सफल नहीं हो सकता। कौन सी बात कहाँ कहना या करना है, इसका निर्णय विवेक के बिना बुद्धिमान व्यक्ति कर ही नहीं सकता। विवेक को शक्ति कहाँ से मिलती है? विवेक को कैसे बढ़ाया जाए? तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। यहाँ सत्संग को व्यापक अर्थ में लेंगे। अच्छा वातावरण जो उद्यमशील बनाए, उत्साह जगाए रखे, ज्ञान विज्ञान तर्क सीखने को मिले, अच्छे संस्कार मिलें, सामाजिक हित की बातें सीखने को मिलें, इन सबसे विवेक, विवेचन क्षमता, नीर छीर न्याय की योग्यता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि निराशा, घरेलू कलह, ईर्षा द्वेष, क्रोध की भावना, झूठ चालाकी का वातावरण मिलता है तो विवेक कुंठित हो जाता है। भले बुरे की पहचान जाती रहती है, बुद्धि पर पर्दा सा पड़ा रहता है। बड़े असमंजस की स्थिति में विवेक की सहायता से किस प्रकार सही निर्णय हो सकता है, इसका उदाहरण चित्रकूट की सभा में देखा जा सकता है, जिसमें भरत पर यह जिम्मेदारी

0: अर्थात संसार, इन दोनों के बीच अंतर कर पाने की योग्यता, ऐसा अर्थ विवेक का किया है। तुलसी कहते हैं, बिनु विवेक संसार घोर नदी पार न पावे कोई। विवेक इस प्रकार सांसारिक सुख और सफलता तथा आत्मिक उन्नति दोनों में समान उपयोगी है। इसलिए सत साहित्य सत संगति से हम विवेकशील बने।
1: चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे विवेक विषय पर ब्रजेश श्रीवास्तव के विचार। वाचक स्वर था राजेंद्र कुमार का। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूली माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा। कीट रोग नियंत्रण की जैविक विधियां जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, सभी प्राणी जैसे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह से कीट पतंगे भी फसलों पर निर्भर रहते हैं और ये फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में कुल कृषि उत्पादन का करीब 25% भाग रोग और कीटों द्वारा नष्ट हो जाता है। साथ ही भंडारण के दौरान भी अनाज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है। इनके बचाव के लिए, इनके नियंत्रण के लिए हम समय समय पर कई तरह के कीटनाशी रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इन कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय क्षरण, मानव और अन्य जानवरों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए जैविक नियंत्रण विधियां काफी कारगर साबित हो रही हैं और अब वैज्ञानिकों की सलाह है कि रोग कीट नियंत्रण की जैविक विधियां ही हमको अपनाना चाहिए। तो हम जान लें कि जैविक नियंत्रण क्या है। जैविक नियंत्रण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ लाभदायक जीवों, जैविक नियंत्रकों, रोगनाशकों, कीटनाशकों द्वारा हानिकारक और रोग कारक जीवों का आंशिक या पूरी तरह से विनाश किया जाता है। रोग कारकों का विनाश करने वाले रोग नियंत्रण या एंटागोनिस्ट तथा कीटों का विनाश करने वाले शिकारी या परजीवी कीट कहलाते हैं। जैव उत्पाद से मतलब ऐसे उत्पाद से है जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों को नष्ट करते हैं। ये अत्यंत प्रभावशाली और आर्थिक रूप से कम खर्चीले होते हैं, साथ ही इनका लंबे समय तक प्रभाव भी रहता है। अब जो मुख्य कीट नियंत्रक हैं उनमें कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, सूत्र कृमि भी हैं और कीटों में ट्राइकोग्रामा। इसी तरह से जो रोग नियंत्रक हैं कवक, ये ट्राइकोडर्मा, बिरडी, ट्राई हार्जियनम, स्यूडोमोनास। इसमें जो रोग नियंत्रक जीवाणु हैं उनमें न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, जिसे हम NPV के नाम से जानते हैं। ये विषाणु कीटों के उदर में जाकर कार्य करना प्रारंभ कर श्वसन को प्रभावित करता है। प्रत्येक कीट का विषाणु अलग अलग होता है। कीटों के NPV युक्त भोजन करने से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे ये कीट फसल के ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर उल्टा लटक जाता है और 2-3 दिन बाद कीट मर जाता है। कीट के मरने के समय उसका रंग बदल जाता है और सड़ जाता है। NPV की 250 LE लार्वा समतुल्य इसका घोल प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। इससे चना, टमाटर, अरहर, कपास के फल भेदक कीट और फूल गोभी, टमाटर, कपास में तंबाकू की इल्ली को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद आता है बैसिलस थ्रिंजियंसिस, जिसे BT के नाम से जाना जाता है। ये जीवाणु कीटों के उदर को प्रभावित करता है, जिससे कीटों को खाने में परेशानी पैदा होती है और इल्लियां संक्रमण के 2-3 दिन बाद मर जाती हैं। BT के उपयोग से अरहर, चना, टमाटर, कपास, भिंडी में फल भेदक कीट, फूल गोभी व बंद गोभी में डायमंड बैक मॉथ, बंद गोभी की तितली और बंद गोभी, कपास, मिर्च, फूल गोभी में तंबाकू की इल्ली और बैगन में तना और फल छेदक कीट को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, अब हम कुछ प्राकृतिक जैव नियंत्रकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों ट्राइकोग्रामा, क्राइसोपरला कार्निया, कॉक्सिनेला, ट्राइसोपा के संरक्षण हेतु हमें प्रयास करना चाहिए।

0: मित्र कीटों की प्रचुर संख्या होने पर कीटनाशक रसायनों का उपयोग न करें। हानिकारक व मित्र कीटों का अनुपात 2:1 होने पर कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल न करें। मित्र कीटों के संवर्धन के लिए अंतर्वर्ती फसलें खासतौर पर अरहर बरबटी उगाना ठीक रहता है। ट्राइकोग्रामा द्वारा भिंडी का प्ररोह एवं फल वेधक, टमाटर का फल वेधक, गोभी वर्गीय सब्जियों का DVM कीट व गन्ने के विभिन्न कीटों का सरलता पूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है ट्राइकोग्रामा से।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, कीट रोग नियंत्रण की जैविक विधियां, जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
4: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

0: बेटियां माता पिता का ही नहीं देश का नाम भी रोशन करती हैं। उन्हें पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही देश की मांग है आज।
2: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।
3: मनु भाई मोटर चली पम पम पम, मनु भाई मोटर चली पम पम पम।
4: याद रखो हमारी बात,
5: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
4: जंगल है धरती का गहना,
5: सदा इसकी रक्षा करना।
4: होगी जो धरती पर हरियाली,
5: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
6: अभी आप

सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बाजीराव विश्वविद्यालयस्य पञ्चसप्ततितमे वार्षिके दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। समारोहावधौ राष्ट्रपति पदासीनया मुर्मू वर्यया 600-12,000 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदास्यति। स्नातक स्नातकोत्तर कार्यक्रमेषु शैक्षणिकोपलब्धिभ्यः सा विद्यार्थिभ्यः सुवर्ण पदकानि अपि प्रदास्यति। तदनन्तरम् असौ वडोदरा नगरे ब्रह्मकुमारीज इति संस्थायाः ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमस्य अन्तर्गते सा विश्वस्य नवनिर्माणाय आध्यात्मिक जागरणम् इति परियोजनायाः उद्घाटनं करिष्यति तथा विकसित भारताय युवा राष्ट्र निर्माणाय आन्तरिक शक्तेः जागरणम् इति अभियानस्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भं करिष्यति। राष्ट्रपतिः गुजरातस्य त्रिदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः गुजरातस्य एकतानगरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य भव्य पृष्ठभूमौ आयोजिते समारोहे भारतीय चलचित्र क्षेत्रस्य प्रमुख प्रतिभाभ्यः 24,000 वर्षस्य 270 राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदत्तवती। चलचित्र जगतः जनान् सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः उक्तवती यत् चलचित्रं भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक वैविध्यतां प्रतिबिम्बयति तथा विभिन्न भाषाणां प्रादेशिक परिप्रेक्ष्यानां राष्ट्रियाभिलाषाणां च मध्ये सेतु रूपेण कार्यं करोति।
1: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
0: समारोहे सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव घोषितवान् यत् राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोह अधुना देशस्य प्रमुखेषु पर्यटन स्थलेषु आयोजयिष्यन्ते। सह राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च भविष्ये पुरस्कार समारोहाणाम् आतिथ्याय प्रमुख स्थलानां चयनं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे राष्ट्रपति वर्यया देशस्य आहत्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगतेभ्यः 92 पुरस्कार विजेतृभ्यः सम्माननं प्रदत्तम्। प्रसिद्धः कन्नड अभिनेता अनंत नागः भारतीय चलचित्र क्षेत्रे 5 दशकाधिककालपर्यन्तं प्रदत्तस्य उत्कृष्ट योगदानस्य कृते प्रतिष्ठितेन दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् उडुपि इत्यत्र श्री पेजावर अधोक्षज मठस्य श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामिना अन्यैः गणमान्यैः च सह मिलितवान्। अस्मिन् अवसरे श्री मोदिना पद्म विभूषण यतिकुला चक्रवर्ती श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः जन्म शताब्दी समारोहस्य प्रतीक चिह्नस्य अनावरणं कृतम्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् श्री विश्वेश तीर्थ स्वामिनः भक्त्या ज्ञानार्जनेन सेवया च परिपूर्णं जीवनम् असंख्य जनान् निरन्तरं प्रेरयति। सः उक्तवान् यत् तस्य जन्मशताब्द्याः उपलक्ष्ये क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़ ओडिशा तटीय आन्ध्रप्रदेश तेलंगानानां पृथक् पृथक् स्थलेषु प्रबलातिप्रबलवृ

0: दृष्टिः सम्भावनां दृष्ट्वा रक्तवेदना
1: प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
3: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
2: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
2: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया है कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है, जहां व्यवसायों को कई सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित हितधारकों की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्थानों पर विभिन्न विभागों के कार्यालय बनाने के बजाय एकीकृत कार्यालय व्यवसायों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंच में मदद करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमरीका छोड़कर अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। मनु भाकर, सुरुचि सिंह और ईशा सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। वहीं मीराबाई चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में चीन का सामना।

0: करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर श्रोता सुनेंगे कहानी दखलंदाजी। कहानीकार हैं कुंदा जोगलेकर। फिल्म संगीत का श्रोता आनंद लेंगे 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी अंशिका चौहान। आप सुनेंगे इनके गाए कुछ भक्ति गीत।

प्रातः 9 बजे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का प्रसारण होगा। प्रातः 9:30 पर श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार होंगी योगिनी तांबे। आप सुनेंगे राग भैरव में ध्रुपद धमार। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित होगा 10:05 पर। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। अपराह्न 1 बजे सुनेगा महिला कार्यक्रम में आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति। चर्चा होगी सहज है सांकेतिक भाषा। साथ ही सुनेगा रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का पाठ। इस कविता पाठ का प्रस्तुत करता होंगी आशी राठौर। चर्चा होगी बदलती ऋतु की सावधानी और हल्के सुपाच्य नाश्ते।

0: शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा। चर्चा होगी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर, आयुर्वेद दिवस और विश्व संकेत दिवस। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6 बजे। हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होता है शाम 7:20 पर। चर्चा होगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और बचत एक लाभ अनेक। साथ ही सुनिएगा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 8:30 पर और 9:15 पर। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात 10 बजे नाटक का प्रसारण होगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:30 पर। अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए, सिनेमा को बताया विविधता का सेतु। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 13,790 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किए भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में कल आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। पुरस्कारों में अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। वहीं अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। उन्होंने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अपनी कलात्मक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा को उनकी पहली निर्देशित फिल्म वीर सावरकर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर और सशस्त्र क्रांति की कहानी को पर्दे पर लाना उनके लिए विशेष महत्व रखता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, मेरा पहला अवार्ड है और मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे मिला है, तो मुझे बेहद खुशी है, न सिर्फ मेरे लिए बाकी बल्कि मेरी पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स और सब। तो इस मूवी के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता था कि सशस्त्र क्रांति भी एक हमारे देश की आज़ादी के संग्राम के लिए बहुत बड़ी चीज थी। सावरकर जी उस संग्राम के इन्फ्लुएंसर थे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश आधुनिक तकनीकी और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने ये बात कल बेंगलुरु में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित इन्वेस्टर्स राउंड टेबल बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ग्वालियर TMZ के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली और मुंबई में आयोजित बैठकों में करीब 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
3: दिल्ली और मुंबई के बाद हमने अपने राउंड टेबल के माध्यम से बेंगलुरु में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारत सरकार के मंत्री, और हमने मिलकर ज्वाइंट एक प्रोजेक्ट खड़ा किया था जिसमें टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन पूरा ग्वालियर के अंदर हम बनाने वाले हैं, जिसमें बीते दो राउंड में हमने लगभग 5,000 करोड़ का निवेश पाया था। यहाँ सफलता के साथ लगभग 1,200 करोड़ के से ज्यादा के निवेशकों के प्रस्ताव हमको मिले हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता कि जितनी लैंड हमारे पास है करीब करीब पूरी लैंड हमारी उसमें समाहित हो जाती है।
1: इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। श्री सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि जोन में टेलीकॉम क्षेत्र के 7 प्रमुख वर्टिकल्स को एकीकृत किया जाएगा। बैठक में निवेशकों ने प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 25 से अधिक टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में होगा। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र की उन्नति से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर विभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप

0: आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नीमच की जावद नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ रुपये से अधिक तथा राजगढ़ की सुठालिया और पार्वती रिंसी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण और संचालन के लिए 962 करोड़ 50 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री स्टार्टअप संवाद में प्रदेश के युवा स्टार्टअप संचालकों से रूबरू होंगे। RCVP नरहुना अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले इस संवाद में प्रदेश के करीब 200 स्टार्टअप संचालक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमियों के नवाचार, अनुभव, चुनौतियों और नए आइडिया पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत एवं ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के मिंटो हॉल में आयोजित इस समारोह में मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर पद्मश्री अनूप जलोटा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रजत पाटीदार को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहेंगे। सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जनसेवा यात्रा आज प्रदेश के आगरमालवा जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा ग्राम बरगड़ी से जिले में प्रवेश कर सुबह 11 बजे बड़ौत पहुंचेगी, जहां स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे यात्रा जिला मुख्यालय आगरमालवा पहुंचेगी। वहीं सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसके तहत डिंडोरी के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगहना में पौधरोपण के साथ रंगोली, चित्रकला और सुपोषण जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। वहीं धार के ITI में सेवा संकल्प अभियान के तहत करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जबकि बैतूल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के लिए लाइव सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर सेवा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग के अनुसार यह सुविधा संवाद की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी। इसके माध्यम से वीडियो इंटरप्रेटर से जुड़ा जा सकता है। इसके लिए www.signable.live वेबसाइट पर सेवा उपलब्ध है। विभाग ने नागरिकों से इस सुविधा की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रदेश सरकार को अनुमति दी है। बीते कल मंगलवार को रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों और सीलिंग से जुड़े मामले की सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवासीय उपयोग की जमीन पर नियमों के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और आवश्यक होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने सील की गई दुकानों के दोबारा खुलने की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए अपने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। सरकार को अंतिम प्रकाशन से पहले मास्टर प्लान की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला 6 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला लखनऊ, वहीं तीसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत की टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। इंदौर में होने वाले मुकाबले के लिए सामान्य टिकटों की ऑनलाइन बिक्री 25 सितंबर सुबह 6 बजे से शुरू होगी। होलकर स्टेडियम में यह 5वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक SCP के घर चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 लाख का माल बरामद किया है। पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत भोपाल में 18वें शक्ति कैफे का कल शुभारंभ किया। खंडवा के नीलकंठेश्वर कॉलेज में NSS कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सूरजकंड स्कूल में महिला पुलिस ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। उज्जैन में डोल 11 के अवसर पर बैरवा समाज ने 35 झांकियों के साथ भव्य डोल फूल चल समारोह निकाला। वहीं श्योपुर और मंडला के मंदिरों से भी गाजे बाजे के साथ देव विमान निकालकर भगवान को जल विहार कराया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आगरमालवा और छिंदवाड़ा में आयुष विभाग द्वारा आज स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ से 150 चयनित तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की यात्रा के लिए कल रवाना हुए। इंदौर के नंदानगर ITI में 29 सितंबर को एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले ने मुख्यमंत्री

हेल्पलाइन की अगस्त 2026 की मासिक रैंकिंग के ग्रुप बी में दूसरा स्थान हासिल किया है और अलीराजपुर कलेक्टर ने रबी सीजन की समीक्षा बैठक में खाद बीज के अग्रिम भंडारण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। सिनेमा को बताया विविधता का सेतु। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 13,790 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कहानी दखलंदाजी। कहानीकार हैं कुंदा जोगलेकर।
1: पिछले 15 दिनों से अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े ऊब गई थी माजी, माजी यानी देवकी। न शरीर का दर्द सहन हो पा रहा था, न ही घर के लोगों की परेशानी। हालांकि कैवल्य ध्यान रख रहा था, लेकिन दोनों पोतों की संवेदनहीनता चुप सी रही थी। कहीं दादी चाय या फिर दादी डिब्बा, बस कुछ देर बैठना जरूरी हो तो मोबाइल में आंखें गड़ाए रहना, ये नहीं कि दो चार बातें कर ले प्रेम से। और बहू तो जैसे कसम खाए बैठी है, ना बोलने की ना सुनने की। कैवल्य ने पूरे समय तक एक नर्स सेवा में रख रखी है, ये क्या कम है। मन को समझा लेती है देवकी हर पल। जैसे ही डॉक्टर सुदर्शन राउंड पर आए, वे उठने को हुई। डॉक्टर साहब अब ठीक हो गई हूँ, मुझे घर भेज दो ना। डॉक्टर के इशारे पर नर्स ने उन्हें रोक दिया। तनिक आक्रोश था उनके चेहरे पर। क्या कर रही हैं अम्मा जी? डॉक्टर मैं हूँ, जब मुझे लगेगा ठीक है तो भेज दूंगा। अपनी अपनी मत चलाइए और दखल मत दीजिए बेवजह, आराम कीजिए, कहकर डॉक्टर सुदर्शन दूसरे वार्ड की ओर चल दिया। हे ठाकुर जी, कहीं भी कोई भी नहीं सुनता मेरी, अब तो सुन लो। प्रार्थना में जोड़े हाथों के साथ आंख भर आई थी। सच तो ये भी था कि सुबह राउंड के समय जब अधमुंदी आंखों लेटी थी देवकी, उन्हें सोया जान डॉक्टर सुदर्शन को कैवल्य से कहते सुन लिया था उन्होंने कि देखिए माँ की हालत ठीक नहीं है, 15 दिन और ज़्यादा ही ज़्यादा, आप घर ले जाकर सेवा कर लीजिए, चाहे तो रिश्तेदारों को भी सूचित कर दीजिए। सुनकर एक पल सांस रुक सी गई थी जैसे, लेकिन अगले ही पल आभार की मुद्रा में हाथ जुड़ गए। कैवल्य कह रहा था नहीं नहीं डॉक्टर साहब यहीं रहने दे, घर पे अचानक कुछ हुआ तो मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता। दोनों के जाने के बाद नर्स फिर आ गई दवाइयों का जखीरा लेकर। उसने साफ कह दिया लाल पीली गोली मत देना, बहुत नींद आती है सिस्टर, और वो रेपर वाली नीली, उससे पेट में जलन होती है, मैं नहीं लूंगी। नर्स ने हंसकर गोलियां और पानी का गिलास टिका दिया हाथों में। अब किस गोली से क्या होता है इतनी समझ तो मुझ में भी नहीं है माँ जी, आपको कहाँ से आ गई, सब लेना पड़ेगा, आपकी दखलंदाजी थोड़े ना चलेगी। हाँ, देवकी ने सर पर हाथ मार लिया और हाथ की गोलियां गटक ली। दखलंदाजी, इस एक शब्द ने पूरी जिंदगी का सत्यानाश करके रखा है। अब ये मरा डॉक्टर और उसकी चमची नर्स, इन्हीं की कसर रह गई थी सुनाने को। ठाकुर जी मुझे तो ये 15 दिन भी नहीं चाहिए। एक बार फिर हाथ जोड़ सोने का ढोंग किए पड़ी रही। उन्हें सोया देख नर्स भी कुर्सी से पीठ टिका जरा सी देर में ऊँगने लगी। कितना थक जाती है बेचारी, देवकी के चेहरे पर दया का भाव उमड़ आया। अगले ही पल नींद को ठेंगा दिखाकर वो मन ही मन पहुंच गई बचपन के गांव, दादा दादी माँ पिताजी और दोनों बड़े भाई बहनों के बीच, जहाँ लाड़ तो मिला लेकिन मन की बात रखने की इजाज़त कभी भी नहीं। सबके बीच में जब भी वो अपनी बात कहने जाती तब बड़े लोग बोल रहे ना तू चुप कर, या फिर बड़े भैया और जिज्जी ने हाँ कर दी तो उसके बाद

0: ये सुनने को मिलता, अब तू दखल मत दे, दोनों ने हाँ कह दी ना। सुनते सुनते बचपन की देहरी लांगी, रही तब भी छोटी और तब भी अनसुनी सी। बड़े भाई और जिद्दी की शादी के बाद देवकी का भी नंबर जल्दी ही लग गया। केशव के साथ साथ फेरे ले इस उमंग में ससुराल आई कि अब वहाँ तो खूब इज्जत मिलेगी और उसकी कही हर बात मानी जाएगी। कुल मिलाकर सबकी तरह अब वो भी मन का कर पाएगी। लेकिन यहाँ तो हाथ की रेखाओं में था ही नहीं कहीं कुछ भी। तभी तो तीसरे चौथे दिन ही सासू माँ के संग हाथ बटाने के लिए जाते समय केशव ने साफ शब्दों में कह दिया, देखो देवकी, मेरी माँ ने शुरू से ही अकेले घर संभाला है, सब कुछ वही करती है, उसे रसोई में किसी की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जितना कहे ना बस उतना ही करो। मैं कोई कल्ला नहीं चाहता और तुम्हारी वजह से माँ दुखी हो ये तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। देवकी जैसे आसमान से गिरी, लेकिन केशव की बात गांठ बांध परिस्थितियों के साथ ढलती गई बिना किसी शिकवे शिकायत के। खैर, पूरे 32 साल के एकाधिकार के बाद सासू माँ अचानक चल बसी। 4-6 दिन के बुखार ने उन्हें दुनिया छोड़ने को मजबूर कर दिया और उनके जाने से घर जैसे अचानक ढहसा गया। अब सारे दायित्व देवकी की झोली में बिन सोचे आ गिरे। कुछ दिन बाद केशव ने प्रेम से कहा था, तुमने मुझसे अपने अधिकारों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं की देवकी, लेकिन अब ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी है, वही करो जो तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और बस इतना सुनते ही निहाल हो गई वह। देखते ही देखते 2 सालों में सब कुछ बदल दिया। पुराना घर सुख सुविधा युक्त 2 मंजिला मकान के रूप में शान से खड़ा हो गया। बेटा कैवल्य इंजीनियरिंग कर अच्छी सी कंपनी ज्वाइन कर चुका था। उसके बाद कुछ पर्यटन, कुछ तीर्थाटन, तीज त्यौहार, सब कुछ मन का करते हुए भी देवकी सुबह शाम ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते नहीं चूकती कि मेरे सोने जैसे दिनों को किसी की नज़र ना लगे ठाकुर जी। और ठाकुर जी धीरे से हंस देते, शायद उनका स्मित देख खुश हो जाती देवकी। इन 2 सालों में जैसे सारी खुशियां समेट ली थी देवकी ने। लेकिन लग गई नज़र, बहू की तलाश शुरू ही हुई थी कि एक दिन कंपनी में साथ काम करने वाली किसी विजातीय लड़की से शादी का निर्णय कैवल्य ने निसंकोच रख दिया सामने। एक बार फिर टूटे सपनों की किरचे संभालते दोनों ने सहमति दे दी। सोचा उसे बेटी की तरह प्यार देगी, सब संभल जाएगा। कैवल्य ने कहा था लड़की खानदानी है तो अच्छी होगी। शादी धूमधाम से हुई और उत्तर भी जल्दी ही मिल गया। जब तीसरे चौथे दिन ही शॉर्ट्स और बनियान पहने रसोई घर से ब्रेड बटर की ट्रे अपने कमरे में ले जाती बहू वेदिका ने बिंदास कह दिया, आंटी आप केवल अपने दोनों का नाश्ता बनाना, मैंने हम दोनों का बना लिया, मुझे आपका ऑयली कुछ भी पसंद नहीं है और कैवल्य भी नहीं खाएगा। लेकिन बेटा उसे ब्रेड पसंद नहीं है। फिर भी वह तो आंसू ना कर बिना प्रत्युत्तर दिए चली गई। बुरा लगा देवकी को। फिर कैवल्य ने भी आकर समझा दिया, माँ वेदिका डाइटिशियन भी है, बड़े घर की इकलौती है ना, थोड़ा जिद्दी है, तुम मत उलझना उससे, कुछ कहना भी मत, मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अच्छा है ना, आप भी अपनी और पापा की पसंद का बना लो, काहे को उसके उन कामों में दखल देना। ये भी दिन देखने थे ठाकुर जी, कहती वह उनके सामने बैठ गई। जी चाह लड़ ले उन्हीं से, लेकिन बिना उनके कहाँ गुजारा था। बचपन से अब तक होंठ सिले रखने का अभ्यास है उसे, भूलने कहाँ देती हैं परिस्थितियाँ। अचानक पसीने से तरबतर होने का एहसास हुआ। लाइट चली गई थी, पंखा रुक गया था, नर्स कहीं बाहर गई थी। वह लेटे लेटे वर्तमान में लौट आई। यूं ही जूझते जूझते 20 वर्ष गुजर गए। केशव तो 10 साल पहले ही देवकी का साथ छोड़ चुके थे। आज वह उम्र के 80वें पायदान पर खड़ी है, नहीं नहीं खड़ी नहीं, बिस्तर पर पड़ी है हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुदर्शन ने कहा था 15 दिन और हैं। एक बार फिर ठाकुर जी से विनती कर ली, घर बुला लो ना ठाकुर जी, रोज नहा धोकर आपकी पूजा सेवा कर लूँगी तो ये 15 दिन भी हंसते हंसते काट लूँगी। और वो 2 साल लेटे ही लेटे उम्र के हिसाब किताब में उलझ गई देवकी। हाँ केवल 2 ही तो साल मिले जब जी ली मनमाफी, बाकी 78 वर्षों का हिसाब का क्या। बस ठाकुर जी आखिरी इच्छा है, मना मत करना, इच्छा भी नहीं विनती है, हाथ जोड़ कर कि घर भेज दो, फिर शेष बच्चे ये 15 दिन जब तुम्हारी सेवा करूँगी और मनमाफिक जीने की वो 2 बरस, दोनों को जोड़कर 2 साल 15 दिन, और इनमें से ना पूरे 78 बरस घटा देना। मैंने नहीं जिया उनको। अब हिसाब कैसे करना है वो आप जानो, मैं कोई दखल नहीं देने वाली।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कहानी दखलंदाजी। कहानीकार थी कुंदा जोगलेकर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव। साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:30 और 30 सेकेंड्स हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और हरिहरन साथी साथियों की आवाज़ों में फिल्म गुरु का ये गीत। बोल गुलजार के थे, संगीत से सवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म सिंघम से श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीतबद्ध किया है इसे अजय अतुल ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय की आवाजों में फिल्म सिंघम का ये गीत। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब?
4: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
1: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
6: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
5: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: अभी आपने सुना शान की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी का ये गीत। गीतकार थे राज कौशल और विशाल, संगीतबद्ध किया था विशाल ने।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

अभी आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाज़ों में फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का ये गीत। गीतकार हैं रजत अरोड़ा।

फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में फिल्म पुकार का ये गीत। बोल हैं जावेद अख्तर के, धुन तैयार की है ए आर रहमान ने।

0: अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम के गाय फिल्म पुकार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और

0: मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्पविकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्पविकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जब सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वत से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
4: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
5: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। ऊर्जा को हर घर तक पहुँचाने के लिए शुरू की गयी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त

0: बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
1: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
0: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
2: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
0: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नवभारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for Global South cooperation amid conflicts, trade pressures and climate challenges. Also stresses for stronger ties with Latin American Caribbean states as trade crosses $50 billion.

0: Ari Solanki, Akashvani News, Vadodara.
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into India's solar revolution.
2: India's solar revolution has transformed from a state-level initiative in Gujarat into a massive national movement driving economic growth, energy self-reliance and clean power. From an installed solar capacity of just 2.8 gigawatt in 2014, the nation has achieved nearly 165 gigawatt by mid-2026. Taking solar power directly to households, Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana has empowered over 51 lakh families and commissioned 14.8 gigawatt of rooftop solar installations across the country. Highlighting this transformative impact of this scheme on ground-level entrepreneurship, Prime Minister Narendra Modi shared an inspiring journey of a beneficiary from Gujarat.
3: आज पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और चार महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई है। पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
2: दिनेश भाई मकवाना, a resident of सुरेंद्रनगर, shares how the initiative has directly benefited his family.
4: मेरा नाम दिनेश भाई मकवाना है। मैं सालों से गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में रहता हूँ। मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली और अब मेरे घर का बिल जीरो हो गया है।
2: टुडे गुजरात स्टैंड्स एज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज।
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
1: The Ministry of Ayush will host the 11th Ayurveda Day in Nagpur, Maharashtra today under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. The Ministry said Ayurveda institutions, practitioners and stakeholders will participate in the celebrations across India and worldwide. The Ministry said the celebrations will bring together key stakeholders from across the Ayurveda ecosystem, providing a platform for knowledge exchange and wider engagement. More from our correspondent.
6: The inaugural ceremony of 11th Ayurveda Day, based on the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow, will be held at the Kavivarya Suresh Bhat Auditorium in Nagpur from 9 to 10 a.m. this morning. Vice Chancellor of the National Institute of Ayurveda Jaipur, Dr. Sanjeev Sharma, informing about this event, said that this year's Ayurveda Day will focus on strengthening Ayurveda through evidence, research and innovation while promoting community health and well-being. Director of the Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi, Dr. Shiv Kumar Sarin will address a scientific session on integrating therapies is needed to reduce non-communicable diseases burden by 2027. The program will also witness the launch of From Traditional Wisdom to Global Leadership Ayush Vision 2030 report, the status report on Ayush-related inventions in India, and the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences Ayurveda Gyan Naipunya Initiative CCRAS Agni and Assessment Scale Web Portal. Dhananjay Vankhede, Akashwani News, Nagpur.
1: The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. The weather agency has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim, Bihar, Jharkhand, Kerala, Mahi, Konkan, Goa, Maharashtra and West Bengal. a deep depression or

0: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार अंशिका चौहान की गायी कुछ भक्ति रचनाएं।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार अंशिका चौहान के गाए कुछ भक्ति गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से। प्रातः के 9 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारित कार्यक्रम।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को अरुणा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज का दिन नई खुशियों से भरा हुआ, नई उमंगों से भरा हुआ और नई खुशखबरियों से भरा हुआ। भई इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है और आजकल हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे खिलाड़ियों की जीत का। जी हाँ, जापान की आईजी नागोयो में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अब तक कुल 7 पदक जीतकर मेडल टेली में 8वां स्थान हासिल किया है और कल का दिन सोने की चमक के साथ सोने सा हो गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक अपने नाम किया और मुख्य रूप से अन्य स्पर्धाओं में मुख्य रूप से शूटिंग में रजत पदक हासिल हुआ है। इस तरह कुल 7 पदक तालिका में हमारे साथ हैं। क्रिकेट के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल को हासिल करने में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर इस एशियाई खेलों में भारत का खाता पहले स्वर्ण पदक के साथ खोला और इसके साथ ही हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा एशियाई खेलों में मनु भाकर और मीराबाई चानू जैसे बड़े खिलाड़ी भी आज के मुकाबलों में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी अपने खिलाड़ी साथियों को प्रेषित कर रहे हैं कि वे अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पदक हासिल करें।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की

0: आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
1: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म जयंती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान राष्ट्रकवि, ओजस्वी लेखक और निबंधकार थे दिनकर। बिहार के बेगूसराय में आज के दिन 1908 में सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ। आज़ादी से पहले वो एक विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने गए और आज़ादी के बाद उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। दिनकर जी छायावादोत्तर काल के पहली पीढ़ी के श्रेष्ठ कवि थे। उनकी रचनाओं में वीर रस, ओज, विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना का प्रखर स्वर दिखाई देता है। एक ओर उनकी कविताओं में क्रांति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाएं भी मिलती हैं। रेणुका, हुंकार, सामधेनी उनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, वहीं कुरुक्षेत्र और उर्वशी उनके प्रबंध काव्य हैं। इनके लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1959 में पद्मभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओजस्वी और वीर रस से ओतप्रोत इस कवि को हमारा शत शत नमन। श्रोता मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है समान रूप से जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। हाथों की हरकतों, चेहरे के भावों और शरीर के हाव भाव का उपयोग करके इसे ही सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज कहा जाता है। अन्य सामान्य भाषाओं की तरह इसके भी अपने व्याकरण और नियम होते हैं। वर्ष 2026 का विषय है बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा। कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो समाज के लिए अनुकरणीय नहीं होता। ऐसे समय में हमें जरूरी है कि हम इस भाषा के जानने वालों तक अपनी पहुंच बना सकें। सुनने में असमर्थ लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा और सांकेतिक भाषा के महत्व के प्रति इस दिन का उद्देश्य है। यह दिन पहली बार 1918 में मनाया गया था। संयुक्त महासभा ने 19 दिसंबर 2017 को प्रस्ताव पारित करके 23 सितंबर को यानी आज के दिन इस दिवस के रूप में इसे घोषित किया।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के

0: साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, सीबीएसई ने 2027 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम जारी कर दी है। ये 2026-27 सत्र के लिए हैं। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ये विषयवार उपलब्ध है। आज आयुर्वेद दिवस है। भारत की प्राचीन और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के प्रति सम्मान, प्रचार और वैश्विक स्तर पर इसके प्रचार के लिए आज के दिन इसे मनाया जाता है। आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक विज्ञान है जो हमें प्रकृति के करीब रहना सिखाता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से आयुर्वेद दिवस मनाने की शुरुआत की थी। पहले यह पर्व धनवंतरी जयंती यानी धनतेरस पर मनाया जाता था, जो कि आज भी मनाया जाता है दिवाली के अवसर पर। वैश्विक स्तर पर इस दिवस की एकरूपता और पहचान बनाए रखने के लिए वर्ष 2025 की तिथि बदलकर प्रतिवर्ष 23 सितंबर तय कर दी गई है। यह प्राकृतिक संतुलन आयुर्वेद के मूल दर्शन को बताता है। 11वें आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है, जो कि साक्ष्य आधारित अनुसंधान और समग्र कल्याण पर जोर देता है। श्रोता मित्रों, आयुर्वेद हमारे शरीर के 5 तत्वों और त्रिदोषों के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। इसमें बताए गए नियम जैसे सुबह जल्दी उठना, योग करना, मौसम के अनुसार सही खान पान अपनाना और आजीवन निरोगी रखते हैं। हल्दी, तुलसी, अदरक और मेथी जैसे घरेलू चीजें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं। आज आयुर्वेद केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आयुर्वेद दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपनी 5000 वर्ष पुरानी विरासत को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान के साथ अपनाकर एक स्वस्थ और संतुलित भविष्य का निर्माण करें।

जी हाँ श्रोता मित्रों, इस गीत की ही तरह आप भी गुनगुनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, इसी शुभकामना के साथ आज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को यहीं विराम देने की अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः

9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं योगिनी तांबे। आप सुनेंगे राग भैरव में ध्रुपद धमार। पखावत संगत है जयंत जयवंत गायकवाड़ की।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे योगिनी तांबे का राग भैरव में ध्रुपद धमार। पखावत संगत थी जयवंत गायकवाड़ की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोठिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। श्योपुर जिले में पिछले एक महीने से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई नदी नाले उफान पर आने से बीते दिनों यातायात भी प्रभावित रहा। जिले में अब तक 761.98 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि जिले की औसत बारिश 822 मिलीमीटर है। जिले के सभी छोटे बड़े तालाब पूरी तरह से भर चुके हैं। लगातार बारिश से धान की फसल को लाभ हो रहा है, जबकि तिल्ली, सोयाबीन और मूंगफली की फसलों को नुकसान बताया जा रहा है। वहीं सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बीते 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम जिले में आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम सीप नदी के पंडित घाट पर हुआ, जहां 21,000 दिए जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर गंगा आरती का आयोजन भी किया गया और दीपों के माध्यम से श्योपुर के पहचान बने चीते को प्रदर्शित किया गया। सीप नदी के सोहन घाट, जति घाट, गिरिराज घाट और संत रविदास चौक घाट सहित जिले के प्रमुख स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत हितग्राहियों को निशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने के लिए बीते 17 सितंबर से शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले में लगभग 77,000 भूखंडों के लिए स्वामित्व योजना के तहत भू अधिकार पत्र दिए गए थे। इनमें लगभग

0: 60,000 निजी भूखंड हैं जिनकी निशुल्क रजिस्ट्री कर हितग्राहियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। वहीं चीता परियोजना के 4 वर्ष पूरे होने पर सेसईपुरा में चीता मित्र सम्मेलन और दीप प्रज्वलन रैली भी आयोजित की गई। इसमें 100 से अधिक चीता मित्रों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। भारत में चीतों की कुल संख्या 55 है। इनमें 42 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में हैं। 36 चीते भारत में जन्मे हैं। कूनो से एक और खुशी की खबर भी सामने आई है। भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने 4 नए शावकों को जन्म दिया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत केंद्र श्योपुर द्वारा शासकीय कन्या परिसर ढेंगदा में बीते दिनों नशा मुक्ति युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नाटक, स्लोगन, भाषण, निबंध और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आगरमालवा में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना के कार्यक्रम के माध्यम से श्योपुर जिले की 107,752 लाडली बहनों के खातों में 1,500 रुपये की राशि अंतरित की गई। मौसमी बीमारियों के कारण जिले के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 600 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें अधिकतर वायरल फीवर के लक्षण वाले मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूषित पानी और बासी भोजन से बचने, साफ सफाई रखने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के करीब 977 मामलों का निराकरण बीते दिनों किया गया और 1,24,27,398 रुपए की राशि वसूल की गई। इनमें विद्युत विभाग के 783 मामलों से 78,38,000 रुपए की वसूली हुई। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत श्योपुर जिले के 68 मेधावी विद्यार्थियों को लाभ मिला है, जिनमें 60 विद्यार्थियों को ई स्कूटी और 8 विद्यार्थियों को पेट्रोल स्कूटी प्रदान की गई। श्योपुर में ब्रॉडगेज का सपना जल्द साकार होने वाला है। ग्वालियर श्योपुर 188 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए 2,922 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पिछले 6 वर्षों में ग्वालियर से श्योपुर तक ब्रॉडगेज का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। जिलेवासियों को वर्ष 2027 में ब्रॉडगेज सुविधा मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर से कैलारस और कैलारस से वीरपुर तक मेमू ट्रेन शुरू की जा चुकी है। क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने श्योपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत मठेपुरा के ग्राम चौंडपुर में 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन अटल सेवा सदन का लोकार्पण बीते दिनों किया। ग्राम ढोडर में 4,12,00,000 की लागत से निर्मित 2 सड़कों का लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही 2,40,000 रुपए की लागत से 3 सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। वहीं धार्मिक गतिविधियों के कारण भी श्योपुर में वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। करहाल क्षेत्र के गांवों में आदिवासी समाज द्वारा गणेश प्रतिमाओं के पंडाल लगाए गए हैं, जहां लोक संगीत और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। श्योपुर से गोवर्धन, श्रीजी धाम, बाबा महाकाल उज्जैन, माता वैष्णो देवी और माता नारायणी सहित विभिन्न स्थानों के लिए पदयात्राएं और यात्राएं भी निकाली गईं। श्योपुर जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था अश्विनी बालोठिया का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 10:05:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म महान से, गीत अनजान का है, संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने। अनुरोध करने वाले श्रोता आप सभी अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनक दीप कौर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टेडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। यवतमाल महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल, रक्षिता और लोखंडे परिवार के सभी सदस्य। सनावत खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। आप सब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म महान के इस गीत में। गीत अनजान का है, संगीत सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत। आशा भोसले, आर डी बर्मन और साथियों की आवाजों में। गीत है गुलशन बावरा का और संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने ही। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। देगलूर जिना नांदेड़ शाहजी नगर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें फरमाइश भेजी है ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव और छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज ने। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाजों में।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
3: सच?
2: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
3: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
2: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
3: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
2: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
5: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म खुददार से आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की।

पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, नागचुन रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। इसी गीत को सुनवा

आने के लिए हमें अनुरोध किया है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने। मधुबनी बिहार से इसी गीत को सुनना चाहे साबिर परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली ने। नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल। लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा और मानसी मालोदे। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाह है जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद्र, रागिनी रेया रेणु और रोनिका यादव ने। आप सब सुनिए फिल्म खुददार का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म रॉकी का ये गीत, आशा भोसले, किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन था आर डी बर्मन का। पसंद किया था आप सभी श्रोता साथियों ने। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े। इस्लामपुर महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया था सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेद कुमार ने। बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मालकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। जालना शहर महाराष्ट्र से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल और बेबी सिया जाधव। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सब सुनना चाहते थे फिल्म रॉकी का ये गीत। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक जारी है।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चमेली की शादी का गीत, आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं अनजान,

संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत फतनाज और शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। पंडरपुर महाराष्ट्र से सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। आप सब सुनिए आशा भोसले को फिल्म चमेली की शादी में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का अंतिम गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म सागर से आवाज़ें हैं आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। जालंधर से अशोक जाटव, कोरिया छत्तीसगढ़ से डोनट पाबो और प्रभा जयपुरिया। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा ने। खंडवा से राकेश पिंकी और दुर्गा, लोनी से प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी चित्रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद, उमेश और धनेश्वरी वर्मा। चाईबासा झारखंड से इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप ने।

बुढ़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। कमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। बटिंडा रोड डब्बीवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और इसी गीत को सुनना चाह है। बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम और दमन और अमीजोत ने। आप सब सुनिए फिल्म सागर का गीत आशा भोसले, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब से कुछ देर में भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र की उन्नति से जुड़ी विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा 25 सितंबर से शुरू हो रही है। इस सेवा के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1500 बसें चलना शुरू हो जाएंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, दैनिक यात्रियों को राहत पहुंचाना और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 सितंबर को भोपाल में स्टार्टअप संवाद में प्रदेश के युवा स्टार्टअप संचालकों से रूबरू होंगे। RCVP नरोहना अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 200 स्टार्टअप संचालक शामिल होंगे। भोपाल पुलिस ने ट्रैफिक ACP के घर चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपये का माल बरामद किया है। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के कई पदक जीतने की संभावना है। माहेश्वरी सिंह, पारिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने आईची नागोया में महिलाओं की टीम स्कीट शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इसकी शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही चौथे दिन देश के कुल पदकों की संख्या 8 हो गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान और जो हमारे नए श्रोता हैं हम उनको अपना फोन नंबर बता देते हैं 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। और हम अपने पुराने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अगर आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया नए श्रोताओं को मौका दें और इस तरह आप नए श्रोताओं को भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
3: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूं।
2: जीनत परवीन
3: जी,
2: क्या हाल चाल है?
3: सब ठीक है सर, आप कैसे हैं?
2: अच्छा, ये देखिए फोन करेगी सुने में आपने फोन लगाया है
3: जी।
2: तो लाजमी है कि आपने कोई गाना सोच के रखा होगा कि कौन सा गाना आपको सुनना है।
3: मुकद्दर का सिकंदर का, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।
2: और गाना?
3: गाना है सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर।
2: लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब की आवाजें हैं इसमें, है ना? हाँ, तो ये गाना हम आपको बिल्कुल सुनवाते हैं।
3: और ये दोनों के नाम लेना चाहूंगी, वो सुन रही है, अंजू परवीन, मम्मी नूर भी।
2: अरे वाह, क्या बात है। तो आप सब सुनिएगा।

0: नमस्ते सर, शिवानी मेहरा बात कर रही हूँ नीमच मध्य प्रदेश से।
1: शिवानी मेहरा नीमच मध्य प्रदेश से जी, सुनाइए क्या हाल चाल है?
0: सर सब बढ़िया।
1: तो बढ़िया ही रहना चाहिए जिंदगी में, जब तक हम बढ़िया हैं तो हर चीज बढ़िया ही बढ़िया होती है।
0: जी सर बढ़िया होनी चाहिए।
1: देखिए आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, फोन करेगी सुने में
0: जी,
1: तो आपके दिमाग में कोई गाना आपने पहले से सोच के रखा है कि कौन सा गाना आप सुनवा रही हैं?
0: सर मूवी का नाम है आंदोलन, गाने की बोले आएगी हर पल तुझे मेरी याद।
1: तुझे मेरी याद, कुमार सानू की आवाज और अलका याग्निक की आवाज, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे?
0: जी सर।
1: तो सुनिएगा जरूर अपने रेडियो सेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी जावेद जी नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल जैसे आप मस्त हैं वैसे ही हम मस्त हैं, सुनने वाले भी मस्त हैं। कहने का मतलब ये कि कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं वो भी बताइए ना।
1: बस यही सुनते हैं, फोन है, और कुछ नहीं।
0: और कुछ नहीं सुनते?
1: नहीं, सुबह वंदना सुन लेते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: वो बाकी जी फोन है।
0: तो आप अपना नाम तो बता दीजिए।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: श्रीनगर जिला महोबा से।
0: श्रीनगर जिला महोबा, तो आप बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा संतोष।
0: संतोष, बिल्कुल संतोष, यानी फिल्म का नाम ही जब आपने संतोष रखा है तो लाजमी के गाना भी आपने अच्छा चुना होगा। कौन सा गाना है?
1: इसका गीत है बताओ तुम्हें प्यार कैसे करें।
0: आशा भोसले है ना? हाँ हाँ, तो चलिए हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, आपने सुनिएगा।

0: आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने, और अब हम देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन हैं। मेरी बात किससे हो रही है?
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ सर, अनूपपुर जिले से।
0: अनूपपुर जिले से नीरज जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया सर, और सब ठीक है।
0: तो कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप हमारे?
1: सर आकाशवाणी से आपके जो भी प्रसारण होते हैं सर, सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं सर आपके, आकाशवाणी भोपाल मध्य प्रदेश।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने कॉल किया है तो कोई अच्छा सा गाना सोचा है आपने कि कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: सर आप सुना दीजिए सर, वो बेटा फिल्म का गाना है सर, वो उदित नारायण जी की आवाज और अनुराधा पोडवाल की है, कोयल सी तेरी बोली।
0: अच्छा, तो आप देखिए इसमें अनुराधा पोडवाल जी और उदित नारायण की आवाज है इसमें।
1: जी सर, जी जी
0: बिल्कुल, हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: खुशबू बात कर रही हूँ मैं।
1: खुशबू जी, क्या हाल चाल है
0: जी? सर बढ़िया।
1: कहाँ से बोल रही हैं खुशबू जी?
0: सर मंदसौर से।
1: मंदसौर से। और सुनाइए कि मौसम कैसा है?
0: मौसम बहुत अच्छा है सर।
1: मौसम बहुत अच्छा है, बस अच्छा ही रहना चाहिए। अच्छा
0: जी सर, बारिश नहीं हो रही, धूप निकल रही है।
1: अच्छा, धूप निकल रही है। हाँ, धूप का, अब बारिश का दौर तकरीबन जा रहा है या चला गया। हाँ, अब मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अच्छा, आपने फ़ोन करेगी सुने में अपना फ़ोन लगाया है, तो आपने कोई अच्छा सा गाना सोचा है क्या? कौन सा गाना?
0: जी सर,
1: गाने के बोल, फिल्म का नाम बताइए।
0: जॉनी मेरा नाम, बाबुल प्यार है ना?
1: जॉनी मेरा नाम फिल्म का कौन सा गाना? बाबुल प्यारे। चलिए, हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? सर मैं ग्राम सिलोंडी जिला कटनी से रमेश अनुराय बोल रहा था।
0: रमेश जी क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर जी, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया, तो आज बड़े जोश के साथ में आपने कॉल किया, तो बताइए कौन सा गाना सुने?
1: बहुत सालों बाद आज कॉल किया है मैंने। बीच में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था यानी, पर अभी मेरे एक मित्र हैं नेगई के, परमलाल जी साहू, उन्होंने अभी दो दिन पहले आके मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया ये ऐप, और उन्हीं ने सजेस्ट किया कि कॉल किया करो। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है।
0: अच्छा चलिए,
1: मुझे बहुत खुशी है सर आज मेरा कॉल लगा है आपके पास।
0: तो बिल्कुल हमारी बात हुई आपसे, इस बात की भी हमें बहुत खुशी है। तो एक बार नाम अपना बता दीजिए और जगह का नाम बता दीजिए।
1: रमेश राय बोला था सर।
0: और जगह?
1: जिला कटनी से।
0: जिला कटनी से
1: जी।
0: तो आप

0: कॉल किया है तो अच्छा सा गाना भी सोच के रखा है कि नहीं?
1: जी सर जी, मुझे मोहम्मद रफी साहब का वो वाला गाना सुना दीजिए, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: आप तो ऐसे ना थे।
1: जी सर,
0: तो रफी साहब का ये वाला गाना हम आपको बिल्कुल सुनवा देते हैं। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, हम आपको ये सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने रेडियो सेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुनने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: परम आदरणीय महोदय, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, और सुनाइए क्या हाल चाल है? आपने इतने अच्छे से जोश के साथ में कॉल किया, मुझे लग रहा था कि मैं सुनता जाऊँ।
1: धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और रेडियो सुनने में रहता व्यस्त हूँ। जो रेडियो सुनता है मस्त रहता है, और जो मस्त रहता है वो स्वस्थ रहता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो प्रजापति जी, आपने कोई अच्छा सा गाना सोच के रखा है?
1: निसंदेह गणेश उत्सव प्रारंभ है और भगवान गणेश घर घर में विद्यमान है और पंडालों में भी उपस्थित अपनी दर्ज करा रहे हैं, और ऐसे खूबसूरत सुहाने भक्तमय वातावरण से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, देवा हो देवा गणपति देवा।
0: तो हम आपको, हाँ, हम आपको ये सुनवा रहे हैं, गाना सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने। अगले श्रोता हमारे कौन है, हम उनसे बात करते हैं।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं वहाड़ा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ सर, दीपाली।
0: दीपाली जी, क्या हाल चाल है?
1: जी हम तो बिल्कुल ठीक है, आप बताइए।
0: बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आमने सामने बैठे हुए हैं। आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारा मकसद है कि हम आपके मन पसंद गाने को सुनवाएं। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: तेरे नाम सुनवा जी। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है।

0: आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन हैं।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं मोनिका राय बोल रही हूं।
0: जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है? ठीक ठाक?
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: चलिए तो बताइएगा कि कैसा मौसम है?
1: मौसम तो इसमें बहुत ही बढ़िया है, कभी धूप कभी छाव कभी बारिश, इस तरह से चल रहा है।
0: हाँ, अब बरसात का मौसम भी जा रहा है तो अच्छा। देखिए, आपने फोन करेंगे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है तो लाजमी है कि आपने कोई अच्छा सा गाना सोच के रखा होगा।
1: जी, वो राम तेरी गंगा मैली का गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई
0: पापियों के पाप
1: टाइटल सा। जी
0: चलिए, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई लता जी की आवाज में है ये गाना, हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने के बजाय मजबूत, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से 351 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसमें 120 इंटरसिटी दो या दो से अधिक शहरों के बीच आवागमन को सुगम और तीव्र बनाएंगी। वहीं 231 इंट्रोसिटी बसें शहरों के भीतर नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवासीय उपयोग वाली जमीन पर नियमों के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग और आवश्यक होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 सितंबर को भोपाल में स्टार्टअप संवाद में प्रदेश के युवा स्टार्टअप संचालकों से रूबरू होंगे। आरसीवीपी नरोहना प्रशासन अकादमी ऑफ में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 200 स्टार्टअप संचालक शामिल होंगे और प्रदेश में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आंगन मिलन सेवा अभियान के अंतर्गत सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को सेवा, पोषण, सीखने, सहभागिता और सम्मान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

ये गीत था फिल्म कटी पतंग से, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और संगीत था आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाह रहे थे। इसी गीत को पसंद किया गांधी चौक रोपड़ पंजाब के श्रोताओं ने। ये हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक। इसी गीत को पसंद किया है गोला बाजार बक्सर के श्रोताओं ने भी। ये हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा जी आर्य। कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए चुना है, जिसे लिया है हमने फिल्म साजन बिना सुहागन से। येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़, इंदिवर के बोल और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सब श्रोताओं की हैं। ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी, सानवी का पत्र हमें मिला है थाना रोड बक्सर से। धामणी मानोरा के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुत डेरे। इसी गीत को पसंद किया है घंटा घर चौक खंडवा के श्रोताओं ने भी। ये हैं संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया। एक और पत्र हमारे हाथ में है, ये है राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज भट्ट। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म साजन बिना सुहागन का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं खानदान फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है रवि का। पसंद आप सब श्रोताओं की यह है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और निशिका के साथ रॉबिन। इस गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा के श्रोताओं ने भी। ये हैं राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके परिवार के सदस्य। इस गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आशा रेडियो श्रोता संघ के सदस्यों ने। इन्होंने पत्र भेजा है उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रिंस, एकांश और इनके साथी। बदलापुर मुंबई से इस गीत को पसंद किया है सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन और इनके साथियों ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित और कुमारी ध्वनि। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर खानदान फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा नगमा, आवाज किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है पड़ोसन। पसंद आप सब श्रोताओं की है। ये हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साबले पाटिल, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी गीत को पसंद किया है पालदा नाका इंदौर के श्रोताओं ने भी। ये हैं हसीना बी मंसूरी, आमिना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता। ये हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। पिपरिया के श्रोताओं ने भी अपनी फरमाइश लिख भेजी है और इनके नाम हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू और जय किशन साहू। बुरहानपुर के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोज मीन और तैमूर तड़वी, भैया तड़वी के साथ रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू और परी तड़बू इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर पड़ोसन फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का वो गीत जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का, आवाज अलका याग्निक, उदित नारायण, करीना कपूर और साथियों की, पसंद आप सब श्रोताओं की है। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम के श्रोता इस गीत को सुनना चाहते हैं। आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। मोटक्का माफी जिला खंडवा के श्रोता भी इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। ये हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन और भावना के साथ कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के श्रोताओं का पत्र भी हमें मिला है। ये हैं टीडी मल्होत्रा, रितेक, प्रीति, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा और इनके साथी। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत के श्रोता पत्र लिखते हैं और इसी गीत की फरमाइश करते हैं। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिदा फिल्म का ये नगमा।

0: फिदा फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद होगा।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
4: सच?
3: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
4: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
3: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
4: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
3: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए

0: लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
1: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
5: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
6: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों के क्रम में पांचवा भाग, जेल का साथी।

0: पर तुरंत आग बबूला हो गया और बिल्ली पर दौड़ पड़ा।
1: अरे मिन्नी कमबख्त, भागती कहाँ है? ठहर, अभी बताता हूँ, अभी तेरी खबर लेता हूँ। दूध फैला दिया, अरे कोई अनाज वगैरह होता तो उसे समेट लेते, इस बिखरे दूध का क्या करूं मैं? इधर इधर भाग कर रही, रुक इधर।
0: बिल्ली तेजी से भाग गई थी। लेखक पीछे चिल्लाता दौड़ा, पर वो क्यों हाथ आने को थी? इसी समय दूसरा कैदी शंकर उधर आ गया।
2: क्यों दद्दा भाई, किस पर झल्ला रहे हो?
1: अरे भाई शंकर, ये मिन्नी ने तो नाक में दम कर रखा है। कभी कंबल से, कभी जांगिये से, कभी कुर्ती से नोच नोच कर खिलवाड़ करती, तो कभी बर्तन गिराती है।
2: अरे कुछ खाने को ढूंढती होगी।
1: ये अंग्रेजों की जेल है। अरे जब हमें ही पूरा नहीं मिलता तो कहां से खाने को पा सकेगी? शायद इसलिए उसने दूधदानी गिरा दी।
2: हाँ भूखी होगी बेचारी।
1: हाँ भाई शंकर, हो सकता है भूखी हो, पर उसकी खबर तो लूंगा ही।
2: दादा भाई वो देखो, वो खड़ी है, कितनी निरीह है, मानो डर रही है।
1: डर नहीं बल्कि नाटक कर रही है। मिन्नी आ, आ मिन्नी इधर आ, आ बेटा आजा आजा आजा आजा जल्दी आ।
0: लेखक के पुचकारने पर वो लौट पड़ी। धीरे से वो उसके पास आ गई, परंतु लेखक में रहने वाला मनुष्य अभी तक नहीं लौटा था। मिन्नी को क्या पता था कि चिड़िया खाकर भी हृदय की जिस सच्चाई का परिचय उसने लेखक को दे दिया, वो दूध पर जीने और पुस्तकों के बीहड़ वन में घूमने वाले लेखक में नहीं था।
2: देखो दादा भाई, आपके पुचकारने पर बिल्ली आ गई।
1: आ गई तो अब देखना।
0: बिल्ली के आते ही लेखक ने करारी चपत लगाई और भागते भागते दूसरी भी, फिर भी उसे पकड़ने दौड़ा।
1: इस कहानी को लिखते समय मन ने मुझे कितनी बार मनुहारा कि अपने पतित जीवन के इस अंश पर प्रकाश न डालूं। आज भी जीवन के प्रति रहने वाली ममता का वस्त्र छिन जाने के बाद भी अपने मन के प्रति रहने वाली वो हिमायत भर नहीं पाई।
0: डर कर भागी हुई बिल्ली लेखक के हाथ न आई। तभी वहां पर जेलर आता है। वो हिंदी को अंग्रेजी अंदाज में बोलता है।
3: तुम जानता है जेल में पालतू पशु रखना जेल का नियम का खिलाफ है।
1: जेलर साहब, जेल में बिल्लियां चूहों की सेना ना बनने देने के लिए घूमती रहती हैं। हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो चारों तरफ चूहे ही चूहे होते और उससे प्लेग भी फैल सकता है, जिससे तुम भी मर सकते हो।
3: क्या भागता है तुम? हम तो बदतमीजी करता है। हम तुमको सजा देगा। I will punish you. Idiot, nonsense, हमको बोलता है मरेगा, देखना।
0: जेलर चीख चाख कर चला जाता है तो लेखक और शंकर खूब हंसते हैं।
2: दादा भाई, आप जेलर को जब देखो तब चढ़ाते रहते हैं।
1: शंकर भाई, मैं राजनीतिक कैदी हूं। देश सेवा के लिए मेरा पाठ यह है कि अंग्रेज अफसरों की बात नहीं मानो, उनका अपमान करो।
2: इससे तो वो उग्र हो सकते हैं ना।
1: सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
2: देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: अरे रघु।
0: लेखक बिल्ली के लिए दूध लेकर काम करने की काल कोठरी की ओर बढ़ा। घुटनों तक का मोटा जांघिया, मोटी कैदियों वाली काली टोपी, गले में लोहे की बंगड़ जिसमें राजद्रोह की दफा 124 ए के सजा याफ्ता की तारीख, सजा होने की तारीख, सजा का परिणाम और छूटने की तारीख वाली टिकट लटक रही थी। यही उस समय कैदी के रूप में लेखक का अवतार था। लोहे का ठीकरा जिसे जेल में तसला कहते हैं, लेखक उसी तसले में दूध लेकर जा रहा था। अभी भी मिनी उसके गुनहखाने में नहीं थी, शंकर वहां नहीं था। इसलिए लेखक ने दूसरे साथी कैदी रघुमणि से कहा,
1: भाई रघुमणि।
4: जी दादा, क्या बात है और इस तसले में क्या है?

0: रघुमणि, तसले में मिन्नी के लिए दूध है। अभी थोड़ी देर पहले उसे दो चपत लगा दी थी, तभी से रूठकर पता नहीं कहां भाग गई है।
1: भाग कर कहां जाएगी?

0: ये मिनी ही तो मेरे अकेलेपन का सहारा है।
1: तभी वहां पर जेलर आता है।
2: तो अपने आप को लेखक बोलता है, कान खोलकर हमारा एक बात सुन लो।
0: जेलर साहब, आपको जो कहना है कहिए, हमारे दोनों कान खुले हैं।
2: हो, अपना आपको इज्जत देता है, हमारे कान खुले हैं ऐसा बोलता है? नो नो नो, ऐसा बोलो, मेरा दोनों कान खुला है।
0: जेलर साहब, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पूरी भारत माता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम का अर्थ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी हमारे भाई बहन आजादी की लड़ाई में एकजुट हैं।
2: तुम घुटना तक मोटा जांघिया पहना है, कैदी वाला काला टोपी तुम्हारा सर पर लगा है, कले में लोहा पड़ा है, ये सब बताता है तुम कैदी हो। और कैदी की औकात क्या है? जो चोर की औकात वही तुम्हारी औकात।
0: हम जेल में हैं वो इसलिए कि हम भारत माता को बेड़ियों में जकड़े नहीं देख सकते।
2: शट अप योर माउथ। गले में पड़ा लोहे का बंगार देखो, इसमें साफ लिखा है तुम दफा 124A का जुर्म का कैदी हो। जानता है 124A दफा क्या होता है?
0: हाँ, हम जानते हैं दफा 124A क्या है।
2: बताओ, जस्ट हमको अभी बताओ उसका क्या मतलब है।
0: हमारी नजर में ये दफा राष्ट्र प्रेम है और तुम लोगों की दृष्टि में राजद्रोह है।
2: जो डर्टी स्वाइन, जो डर्टी इंडियन, तुम हमको थम बोलता है, तुम बोलता है हमको, जेलर को तुम बोलता है।
0: बस बस बस, इतनी सी बात पर तिल मिला गए जेलर। हमारी सोचो जो इतने वर्षों से तुम लोगों के जुल्म सह रहे हैं।
2: जो डर्टी इंडियन, तुम हमको थम बोलता है हमको, जेलर को थम बोलता है।
1: जेलर क्रोध में गालियां बकता वहां से चला जाता है।
2: जो डर्टी इंडियन।

0: लेखक ने एक काम अच्छा किया था कि दूध का तसला पहले ही जमीन पर रख दिया था, अन्यथा वो गिर जाता।
1: दादा, आप व्यर्थ में जेलर से उलझते हैं।
2: अरे, मैं उसे इसलिए चिढ़ाता हूँ कि वो मन ही मन जलता रहे और अपना खून सुखाता रहे।
0: इसी बीच शंकर नाम का कैदी भी वहाँ आ जाता है।
3: क्या हुआ दादा?
0: लेखक उत्तर देता, उससे पहले ही रघु बोल पड़ा।
1: शंकर भाई, दादा ने अपने स्वभाव के अनुसार जेलर को चिढ़ाया तो वो गुस्से में भर गया और दादा पर उसने रूल बरसा दिया।
3: अरे दादा, लगे तो नहीं दादा?
2: अरे भाई शंकर, हम तो आजादी के मतवाले हैं, ये रूल क्या चोट पहुंचाएंगे हम पर? हम तो गोलियां भी सीने पर खाएंगे तो भी मुंह से आ नहीं निकलेगी, बल्कि हंसते हुए सीने पर हम गोलियां झेलेंगे। अच्छा, तुम दोनों मिनी को ढूंढो। तुम लोग तो जानते हो मैं राजनीतिक कैदी हूं। मेरा कोठरी से बाहर घूमना, किसी कैदी से बात करना और किसी भी समय बिना काम किए खड़े रहना गुनाह है, इसलिए मैं बाहर उसे कहीं नहीं ढूंढ सकता।
3: दादा, तभी आप जेलर के आने पर हम लोगों से पहले दूर हो जाते थे।
2: बिल्कुल ठीक। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग उस निर्दयी जेलर की हिंसा का शिकार बन जाओ।
1: दादा, भले ही हम छोटे किस्म के चोर हैं, परंतु आपके साथ रहकर हमें ग्लानी हो रही है।
3: आज हम सोचते हैं कि हम भी जेल में आप जैसा कोई काम करके आते दादा, तो हमारे घर वाले भी गर्व से कहते कि उनका शंकर देश के लिए जेल गया है।
1: मेरे घर वाले शर्मिंदा नहीं होते कि रघु साइकिल चुराने के अपराध में जेल गया है।
3: दादा, आप पारस हैं दादा, आपने अपने सानिध्य से हमें कुंदन बना दिया है दादा।
1: और अब अगर जेलर ने दादा पर रूल चलाया तो माँ कसम मैं उसका खून पी जाऊंगा।
3: खून पी जाएंगे?
1: हाँ।
2: मुझे खुशी है कि देश के लिए तुम लोगों में सद्भावनाएं जागृत हो गई हैं।
3: यह आपके ही गुणों का प्रभाव है दादा।
2: शंकर, जेलर की नजर में मेरे अकेले दफा 124 का मुजरिम होने के

0: कारण मेरे गुणों को दोषों में बदलने का अवसर तो भरपूर है, और गुणों को भी नित्य दोषों में शुमार किए जाते देखना मेरी मजबूरी है।
1: रघु और शंकर दोनों कैदी बिल्ली को ढूंढने में जेल का कोना कोना छान मारते हैं, परंतु बिल्ली नहीं मिली।
2: दादा, बिल्ली कहीं नहीं मिली।
0: रघु, तुमने जो आकर कहा कि वो नहीं मिली, ये इनकार ही मुझसे मेरे विनोद की ही इनकार नहीं है, ये मुझसे मेरे आत्मसंतोष की इनकारी भी है। भाई शंकर, मेरी मारी हुई दो चपतें जेल के कोने कोने से मेरे पालतू प्राणी को निकाल बाहर कर चुकी है। मैंने क्यों मारा उसे शंकर भाई? रघु भाई, मैंने मिन्नी को क्यों मारा? क्यों मारा? केवल इसलिए कि उसने दूध ढुलका दिया, या इसलिए कि मैं आदमजात हूं और मानव रूपधारी प्राणधारियों से अधिक पवित्र मुझे उसका अपने मुंह से मेरे बर्तन का भारी भाग तक छू जाना बर्दाश्त ना हुआ था?
1: लेखक अपने लोहे की तसले में दूध लिए प्रतीक्षा करता रहा, परंतु मिन्नी नहीं आई। लेखक बिल्ली की म्याऊं सुनने को तरस रहा था। अब उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने बिल्ली को चपतिया दिया था। ममताहीन लातें खाकर खुशामद तो पशुत्व से भी नीचे की चीज है। पशु भी लातें खाकर खुशामद नहीं करते। स्नेह और सेवा का साथी वो पशु क्यों लौटता?
3: अरे अरे, मिन्नी आ गई, मिन्नी आ गई। शंकर, रघु, तुमने सुना मिन्नी की आवाज? मेरी मिन्नी आ गई।
2: नहीं दादा, हमने तो नहीं देखी मिन्नी।
3: हाँ?
4: जब वो यहाँ है ही नहीं तो उसकी आवाज कहाँ से आएगी दादा?
2: दादा, आप बिल्ली के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। हाँ? इसलिए आपके दिलो दिमाग में उसी की आवाज गूंज रही है।
0: मार खाकर कौन फिर उसी जगह लौटेगा जहां मार पड़ी हो?
4: दादा, पशु भी वहां आने से बिदकते हैं।
0: तुम ठीक कहते हो रघु, ऐसी सत्ता मिन्नी क्यों स्वीकृत करती? रघु,
4: आपने ठीक कहा है दादा।
0: शंकर भाई, मैं तो अब यह भी सोच रहा हूं कि जब मिन्नी को पता है कि उसमें लपकने की तैयारी, उछाल मारने की ताकत और दबे पैरों जाने की सावधानी है, शक्ति का इतना खजाना रखकर उसे किसी का आश्रित रहने की क्या जरूरत है?

0: कितनी मधुर आवाज थी। पता नहीं उस आवाज में ही वो माधुरी था या लेखक की क्रूरता के अतिरेक के खिलाफ आत्मचिंतन ने उसकी उस आवाज में लेखक के जी में सहम कर छुपे हुए माधुर्य का उसकी आवाज पर आरोप कर दिया था। लेखक दूध का तसला लेकर पुचकारता हुआ दरवाजे की तरफ झपटा।
1: आजा, आजा बेटा, इधर आ, ले दूध पी ले। ओह, ये सीखचों वाला दरवाजा बंद है।
0: सीखचों वाले दरवाजे में बाहर से लंगर पड़ा था। एक तो अंदर के कैदी का हाथ लंगर तक पहुंच ना सकता था, दूसरे दरवाजे में ताला पड़ा था। जेलर बैरिक के दूसरी तरफ घूमता हुआ निकल गया था। लेखक और मिनी की वो ममताएं थीं। लेखक बोलकर कैसे क्षमा प्रार्थना करता और ना समझी जाने वाली भाषा बोलने वाली मिनी अपने कर्तव्यों से ही अपना मन एक दूसरे के प्रति जताया करते थे।
1: जी चाहता है ताला तोड़ दूं, दुबला हूं, ये तो ठीक है, पर वाह रे जी, कैसा बावला ये जी है। अरे रघुमणि जी, दादा जरा दरवाजा तो खोलो। अच्छा दादा, लो दादा दरवाजा खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद रघु, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दरवाजा खुलने की आवाज पर

0: रोज मिन्नी दरवाजे के सींचों पर चढ़कर अपनी भक्ति प्रकट किया करती थी, किंतु आज वो म्याऊं भी करती जाती, लेखक की ओर देखती भी जाती पर दूर भागती भी जाती।
1: क्यों तंग कर रही है मिन्नी? हाँ, कभी बिना पुचकारे तू मेरे पैरों पर से, मेरे जांघिए पर और फिर कुर्ती पर चढ़ते हुए मेरे कंधे पर चढ़ जाती थी। पर आज मैं प्यार से बुला रहा हूं, पुचकार रहा हूं, हाथ में दूध का बर्तन है, फिर भी नहीं आ रही। हाँ,
0: लेखक के हृदय में पश्चाताप के भाव थे, परंतु बिल्ली पर वो असरकारक नहीं हो रहे थे। दिन के 2:30 बजे थे, लेखक की छाया जमीन पर पड़ रही थी, परंतु मिन्नी छाया के छोर से भी आगे खड़ी थी। क्रूरता से मनुष्य पशुओं तक का विश्वास पात्र नहीं रह जाता। मिन्नी फिर भागने को हुई।
1: ठीक है मिन्नी, मनुष्य इतना ही बेकार है। यदि मुझे मालूम होता कि मेरे प्रेम का भाव तुझे पकड़ने के लिए और पुचकार तुझे जोर से ठोकर मारने के लिए है, तो तू मेरे पास आने की गलती ही क्यों करती? किंतु मैंने राजनीति पढ़ी है, तुझे मालूम है, तू अपने कोमल पैरों के तेज नाखूनों को निकालकर मेरे साथ खेलती, किंतु मैं उस समय चाहे तुझे कितनी दूर उठाकर फेंक देता, पैर पकड़कर खींच लेता, कान पकड़कर कानों के सहारे लटकाए रहता, टांग पकड़कर छोटे से खिलौने के मुगदर की तरह तुझे घुमाता और पूंछ पकड़कर किसी दीवार या कैदियों के सोने के चबूतरों पर से नीचे खींच लेता, किंतु खुले नाखूनों में भी तू मुझे नाखून गड़ न जाए इस बात से सावधान रहती। तेरे मरने जीने के प्रति रहने वाली मेरी उपेक्षा में भी तेरा स्नेह, तेरी सावधानी कायम रहती। मैं नाखून काट डालता हूं, किंतु बिना नाखूनों के नाखून मंदों को हराने में कमी नहीं करता।
0: बिल्ली दूर से ही म्याऊं म्याऊं कर रही थी, लेखक के मनाने पर भी पास आना संभव नहीं हो रहा था। लेखक दूध का तसला लेकर आगे बढ़ता है, तसला दूर रख दिया, वो तसले से दूर बैठ गया। इच्छा थी मिन्नी दूध भर पी ले, फिर चाहे जहां जाए। लेखक 33 बरस 7 मास का था और मिन्नी केवल 1.5 मास की।
1: रात में कितनी ही बार बिस्तर पर वो उछल कूद मचाती, दिन भर काम करते हुए मुझ राजनीतिक कैदी का, जो जेल में हत्या के कैदियों से भी भयंकर माना जाता है, का जी बहलाती, आज वो कांप कर भागती है मुझसे।
0: उसकी म्याऊं म्याऊं कहती है कि वो पुनः कमरे में आ जाए, परंतु उसकी आंखें कहती हैं ये मनुष्य है, तिस पर पढ़ा लिखा लेखक।
1: अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा मिन्नी, ऊंची काली दीवारें होंगी, काले काले सीखचे, मिन्नी मेरे एकांत का निष्पाय साथी थी, जो हृदय को गुदगुदी, हाथों पैरों की दौड़ धूप और चपलता, मन को सादगी और अमर मुस्कुराहट देती। शायद वो कहती थी, लो सीख जे राम, अब हम तुम अकेले रहेंगे।
0: लेखक ने देखा मिन्नी धीरे से तसले के पास आई और फिर लौट गई। लेखक को उसके दूध पीकर लौट जाने का विश्वास था। लेखक ने थोड़ा सा दूध एक पत्थर पर डाला, वो फिर भी नहीं आई। लेखक ने पूरा तसला रख दिया था और खुद दूर जाकर बैठ गया। इस बार मिनी आगे बढ़ी, उसने दूध पीना शुरू किया।

0: देखो दद्दा देखो, बिल्ली दूध पी रही है।
1: आखिर आप पर रहम आ ही गया।
2: लेखक धीरे से उस तसले के पास आया। वो भागी पर लौटकर फिर तसले के पास आ गई। पेट तेरा बुरा हो, लेखक ने धीरे से पीठ पर हाथ फेरा। उसने पूंछ हिला हिलाकर उसकी स्वीकृति दी। दूध पी लेने के पश्चात वो धीरे से उसकी गोद में आकर बैठ गई। मैं अपनी काल कोठरी में उठा लाया। सन बढ़ चुका, सवा शेर का टांच पूरा कर चुका।
3: मैं ये कहानी लिख रहा हूं, वो मेरे कंबलों और मेरे कपड़ों से खिलवाड़ कर रही है। जेल का रूठा साथी अब मन गया है।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में पांचवा भाग। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आज 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए वार्षिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। इससे ये योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बन गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और

0: संतुलित जीवन शैली का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय सुशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम से प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की 351 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 27 सितंबर को भोपाल में स्टार्टअप संवाद में प्रदेश के युवा स्टार्टअप संचालकों से रूबरू होंगे और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के कई पदक जीतने की संभावना है। भारतीय टिकरी ने आईजी नागोया में महिलाओं की टीम स्किट शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इसकी शुरुआत कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
2: महिला सभा कार्यक्रम में आपकी दोस्त ज्योति शर्मा हाजिर हूँ आपके साथ। करती हूँ आपके चहेते कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, दुनिया भर में यूं तो बहुत सी भाषाएं हैं जिनका अपना अलग तरीका होता है सीखने का, पर सखियों आज हम एक ऐसी भाषा के बारे में बात करेंगे जिसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, मतलब कि वो भाषा शब्दों की सीमा से परे है, जिसमें हमें अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस कुछ संकेतों के जरिए हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज की। सांकेतिक भाषा में शब्दों की बजाय संकेत, हाव भाव और प्रतीक का प्रयोग होता है। यूं तो सखियों, हम आप कभी कभी अपनी बातों को शब्दों की बजाय कभी संकेत से, कभी इशारों से या फिर कभी किसी आकृति के द्वारा सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। और सखियों, इसके ऊपर एक खेल भी बना है जिसमें हाव भाव और संकेतों से किसी फिल्म के नाम को पहचानना होता है। पर सखियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया सांकेतिक भाषा पर ही टिकी है। मूक बधिर लोग जो बोल और सुन नहीं सकते, साइन लैंग्वेज ही उनके लिए संचार का मुख्य माध्यम है। सखियों, साइन लैंग्वेज के द्वारा वे लोग अपने विचार और भाव आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साइन लैंग्वेज शिक्षा, रोजगार और समाज में मूक बधिर लोगों की सहभागिता को सरल बनाती है। हमारे ही आसपास सांकेतिक भाषा के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं सखियों, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, गाड़ी का हॉर्न, सिर हिलाना, इशारों में बातचीत करना। और सखियों, आज के दौर में तो इमोजी और आइकन भी हैं। बहुत गहरी और व्यापक होती है वो भाषा जिसमें सखियों शब्द ना हो। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर 2018 को सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया था, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। पर जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए संकेतों की ही अपनी एक भाषा है। और इस दिन को मनाए जाने का प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ यानी कि WFD ने रखा था, जिसका उद्देश्य साइन लैंग्वेज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और दुनिया भर में मूक बधिर समुदाय के मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इस साल की थीम भी है बधिर लोगों के मानव अधिकारों की घोषणा। और सखियों, वैसे भी कहते हैं ना, कुछ बातों के लिए शब्द बने ही नहीं हैं, तभी तो कभी नैनों से, कभी इशारों से, तो कभी चुप्पी से हाले दिल बताया जाता है।

0: सखियों कार्यक्रम का रुख बदलते हैं और आपको सुनवाते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का पाठ। वाचन स्वर है आशी राठौर का।
1: रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के उन महान कवियों में से हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, शक्ति और नारीत्व को बहुत गहराई से अभिव्यक्त किया है। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी के महाकाव्य उर्वशी का एक अंश है। ये पंक्तियाँ उर्वशी से पुरुरवा द्वारा कही गई। मृत्य मानव की विजय का तूरी हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसी मुस्कान से। तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। बाहों के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मृत्य नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है, देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घूर्णियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में। मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। वहनी का बेचैन या रस कोस बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है, एक ही आशा मरुस्थल की तपन में। प्राण की चिर संगनी या वहनी इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मृत नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी सर पर तुम्हारी छा है। एक ही सुख है उस स्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाँ है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कान में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कान में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। अब जो पंक्तियाँ मैं सुनाने जा रही हूँ, इन पंक्तियों को हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के महाकाव्य उर्वशी से लिया है, जिसमें उर्वशी अपने अप्सरा से माँ बनने की पीड़ा व्यक्त करती है। आने को तो स्यात आज यह अंतिम ही आना है, कल से तो फिर लौट पड़ेगी वही सरणी जीवन की। दिन भर रहना संग संग प्रियतम के जहाँ रहें वे, और बिता देना समग्र रजनी उस प्रणय कथा में, जिसका कहीं ना आदि न तो मध्यावासान होता है। हाय पुत्र तू क्यों आया था उसके बंध्य उदर में, अभिशप्ता जो नहीं प्यार माँ का भी दे सकती है। मैं निमित ही रही सुकन्ये इस अबोध बालक की, तुम्हें छोड़कर निखिल लोक में और कौन माता है।

0: केवल भ्रूण वहन केवल प्रजनन मातृत्व नहीं है, माता वही पालती है जो शिशु को हृदय लगाकर। अपना सुख तृणवत नगण्य है, उसे छोड़ सकती हूँ, किंतु पुत्र का भाग्य भूमि पर रह कैसे फोड़ूंगी। अब जो पंक्तियाँ आपको सुनाने जा रही हूँ वो दिनकर जी के कविता संग्रह रंभा से ली गई हैं। सो सुख तो होगा परंतु यह मही बड़ी कुत्सित है, जहाँ प्रेम की मादकता में भी यातना निहित है। नहीं पुष्प ही अलम वहाँ फल भी जन्ना होता है, जो भी करती प्रेम उसे माता बनना होता है। और मातृ पद को पवित्र धरती यद्यपि कहती है, पर माता बनकर नारी क्या कलेश नहीं सहती है। तन हो जाता शिथिल, दान में यौवन गल जाता है, ममता के रस में प्राणों का वेग पिघल जाता है। रुक जाती है राह स्वप्न जग में आने जाने की, फूलों में उन्मुक्त घूमने की, सौरभ पाने की। मेघों में कामना नहीं उन्मुक्त खेल करती है, प्राणों में फिर नहीं इंद्रधनुषी उमंग भरती है। रोग शोक संताप जरा सब आते ही रहते हैं, पृथ्वी के प्राणी विषाद नित पाते ही रहते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दिनकर जी की कविता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में न उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का पाठ, वाचन स्वर था आशी राठौर का। सखियों, परिवर्तन के साथ सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो परिवर्तन कैसा भी हो, चाहे इंसानी व्यवहार में हो, हमारे बोलने में हो, खान पान में हो, स्थान में हो, व्यक्तित्व में हो या फिर ऋतु में हो, हम थोड़ी सी परेशानी में आ ही जाते हैं, क्योंकि हमें उस परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है। सखियों, प्रकृति हर ऋतु में एक नया संदेश देती है मानव को, और हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को उस संदेश के अनुसार ढालना होता है, और इसे ही ऋतुचर्या कहा जाता है। जैसे गर्मी में तरल ठंडे पदार्थ और फल, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, बरसात में हल्का भोजन और सर्दियों में गर्म तासीर की चीजें भोजन के रूप में लेना, यही मौसमी चिकित्सा कहलाती है। क्योंकि ऋतु परिवर्तन के दौरान हमारा शरीर नए तापमान और वातावरण के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करता है, इस कारण इस समय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण सर्दी जुकाम और फ्लू बहुत फैलता है। यदि घर में एक को होता है ना सखियों, तो फिर सभी को होता है। इसलिए ऋतुओं के अनुसार खान पान, दिनचर्या और पहनावे को भी अपना कर हम रोगों से बच सकते हैं। बस कोशिश करें कि किसी भी तरह से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर न होने दें, और इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें लेनी होंगी। इस मौसम में स्ट्रीट फूड और तेल का खाना, इन सब से परहेज करना होगा, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, और सबसे बड़ा कारण होता है बीमारियों का मक्खी और मच्छर। तो इसके लिए अपने घर और घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे पानी को ना जमा होने दें और पूरी बांह के कपड़े पहने, और शाम के समय घरों में नीम का धुआं करें, और रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। नींद भरपूर लें और पानी खूब पिएं। और घर में कोई व्यक्ति वायरल से पीड़ित है तो उस व्यक्ति से

दूरी बनाए रखें, अपनी साफ सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखें, साफ कपड़े पहने और रोज स्नान करें, और बाहर से आकर हाथ और पैर अच्छे से धोएं। सखियों, यूं तो हर ऋतु निराली होती है, बस जरूरत होती है कि हम उसके निरालेपन में घुलने मिलने के लिए खुद को तैयार रखें।

0: सखियों, जब कभी पेट भरा सा लगे पर कुछ अच्छा और हल्का खाने का मन करे, जो पचने में भी आसान हो और बनने में भी आसान हो, तब बनाएं ये नाश्ते जिसकी विधि आज हम आपको बता रहे हैं। सखियों, पहले बता रहे हैं हम आपको सूजी और पोहे का चीला बनाने की विधि। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 1 कप पोहा, 1/2 कप सूजी और 1/4 कप दही, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार और इनो 1/2 छोटा चम्मच और तेल 1 छोटा चम्मच। सखियों, अब नोट कीजिए चीले बनाने की विधि। पोहा धोकर एक बर्तन में डालें और इसमें सूजी और दही डालकर मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए इसे रख दें ताकि सूजी फूल जाए और पोहा नर्म हो जाए। सखियों, मिश्रण के नर्म होने पर इसे मिक्सर में डालकर पीस लें और चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लें। फिर जो भी हमने सामग्री काट के रखी है, जैसे कटा हुआ धनिया, प्याज, मिर्च, उसे इस बैटर में डाल दें और अच्छे से मिला लें। अब तवे पर या नॉन स्टिक पैन लेकर उसमें थोड़ा सा तेल डालें और तवे को चिकना करें और चम्मच की मदद से बैटर को पैन पर फैलाएं और धीमी आंच पर ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लें। पलटकर इसे दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लीजिए। अब इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। सखियों, चलिए बनाते हैं अब दूसरी एक और हेल्दी और सुपाच्य डिश। ये है ओट्स का चीला। तो सखियों, सबसे पहले नोट कीजिए इसे बनाने की विधि। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप सादा ओट्स और दही 1/4 कप। इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो 1/2 कप इसमें आप प्याज ले लीजिए बारीक कटी हुई, टमाटर चॉप किए हुए, गाजर और शिमला मिर्च भी चॉप की हुई और बारीक हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। मसालों में सखियों, हमें इसमें लेना है नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच तेल तवे पर लगाने के लिए। सखियों, अब नोट कीजिए इसे बनाने की विधि, जो कि बहुत सरल है। ओट्स को मिक्सी में डालकर सूखा ही पीस लीजिए और एक बर्तन में निकाल लीजिए। अब पिसे हुए ओट्स में दही डालिए और थोड़ा सा पानी डालिए और बाकी जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो भी डाल दीजिए और धनिया मिर्च और बाकी के सारे मसाले डालकर भी इसे अच्छे से मिला लीजिए। ध्यान रहे सखियों, घोल ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। बस अब इसे तवे पर चम्मच की मदद से फैलाते हुए चीले दोनों साइड से सेक लीजिए। तो सखियों, ये नाश्ता जितना हेल्दी है ना, उतना सुपाच्य भी है और मुझे यकीन है कि आपके घर में सभी को पसंद आएगा। तो आप ज़रूर बनाएं और सभी को खिलाएं और अपनी दोस्त ज्योति शर्मा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम महिला सभा संपन्न करने की। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले 1 वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
3: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
2: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
4: मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। जो मातृभाषा का अपमान करता है वो देशभक्त कहलाने लायक नहीं। ये बात कही महात्मा गांधी ने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे उत्तम सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत।

उत्तम सिंह यादव और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए साधना गोरे का गाया भजन और गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है।

0: साधना गोरिके का इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
3: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
2: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
4: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है अंकित तिवारी और पलक मुच्छाल का गाया हुआ फिल्म सनम तेरी कसम से, समीर का गीत और अनजान का हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। आयुष्मान भारत योजना के आज 8 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिली है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाती है। आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 8 साल पहले आयुष्मान भारत की शुरूआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर भारतीय को बेहतरीन और किफायती हेल्थ केयर मिल सके। श्री मोदी ने लिखा कि आज 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बन गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र का नया नाम आरोग्यम धाम सिंगल क्लिक के जरिए जारी किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जनकल्याणकारी योजनाओं की भी शुरूआत की। साथ ही विभाग के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा,
1: परिवार में बात करें तो आयुर्वेद की शुरुआत अपने घर के किचन से हो जाती है। हमारे घर के अंदर पता नहीं ऋषि मुनियों ने कब से अपने भोजन में सब्जी दाल और सबके साथ ये कहां कहां से मिक्स करना सीखा, क्या हल्दी की मात्रा होना चाहिए, कितना तेल होना चाहिए, कितना मसाला होना चाहिए। दादी माँ का बटवा, हमारे अपने जीवन में हल्दी का काढ़ा।
0: आयुर्वेद दिवस के मौके पर खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में बना हर्बल गार्डन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहां मौजूद स्टाफ औषधीय पौधों के उपयोग की जानकारी देगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को सेवा पोषण और सम्मान का केंद्र बनाने के लिए प्रदेशव्यापी आंगन मिलन सेवा अभियान चलाया जाएगा। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित होगा। पहले दिन बाल स्वास्थ्य गतिविधियां और स्वास्थ्य परीक्षण होंगे। दूसरे दिन लाभार्थी महिलाएं योजनाओं से मिले लाभ के अनुभव साझा करेंगी। सागर पुलिस को जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। 30,000 रुपए के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मनीष लोधी और उसका साथी आशीष साहू दोनों घायल हो गए। गोली लगने से घायल दोनों आरोपियों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बच्चों की कल्पनाशीलता, जिज्ञासा, संवेदना को साहित्य से जोड़ने के उद्देश्य से भोपाल में 26 अक्टूबर को बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अर्चना प्रकाशन न्यास के तत्वाधान में होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों से बाल साहित्यकार और साहित्य प्रेमी शामिल होंगे। सम्मेलन के साथ बाल साहित्य पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आयोजन में बाल साहित्य के साथ बाल अधिकार, संस्कार और बाल मनोविज्ञान जैसे विषयों पर चर्चा होगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून सीजन में अब तक 869.3 मिलीमीटर यानी 34.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 6% कम है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने अब दाव के असर से प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू हो गया है और 26 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल पोहरी जनपद के ग्राम छर्च में विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बधिरजन सप्ताह के तहत जिला अस्पताल विक्टोरिया में जागरूकता रैली निकाली गई। वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जनसेवा संकल्प यात्रा ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम बरगड़ी से प्रवेश किया। नर्मदापुरम जिले में आज 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गुना कलेक्टर ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित प्रबंधन समिति की बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों की

समीक्षा की। रतलाम में सेवा संकल्प अभियान के तहत 28 से 30 सितंबर तक विकासखंड स्तर पर सेवा सेतु कैंप आयोजित होंगे। सिंगरौली में मछुआरा सहकारी समिति के सदस्यों को 1,00,000 मिश्रित मत्स्य बीज निःशुल्क उपलब्ध कराकर जलाशय में संचय किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली 3 व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान

0: बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं। ड्यूरेबल इंस्टीट्यूशनल
1: शेप। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
0: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240

0: करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
1: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
0: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
2: माय नेम इज रमेश।
3: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
2: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
0: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
6: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवदेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी गवाणपुर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर और टुकटुक गवाणकर, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी। आप सब ने सुनना चाहा है प्यार तो होना ही था फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने, विनोद महेंद्र का गीत और जतिन ललित का संगीत।
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
3: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनुरत रेखवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रेखवार और छापड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, आप सबने सुनना चाहा है एक था टाइगर फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज दी है तरन्नुम मलिक ने, कौसर मुनीर का गीत और सोहेल सेन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत ट्यूबलाइट फिल्म से, आवाज आतिफ असलम की, अमिताभ भट्टाचार्य का गीत और संगीत प्रीतम का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। घंटागर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। धामड़ी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत्र डेरे। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

कवाईपारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, राजा बाजार बिहार आरा से सुरेश प्रसाद केसरी, पूनम देवी केसरी, प्रतिज्ञा केसरी, श्रद्धानंद केसरी, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी, बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहत से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजबीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजुबाई तड़वी, सनी बाबू, परू पड़वी एवं समस्त तड़वी परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू और श्रीमती मायावती साहू। आप सबने पसंद किया है पत्थर के फूल फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम ने। नूर केसर के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा आर्टिकल 15 से यसीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाज़ें, रश्मि बिराग का गीत और पीयूष शंकर का संगीत। इस गीत को पसंद किया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष, प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नोपुर और ऋषिका रॉबिन। साथ ही असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबेर अंसारी ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिली है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र का नया नाम आरोग्यम धाम सिंगल क्लिक के जरिए जारी किया। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र को सेवा पोषण और सम्मान का केंद्र बनाने के लिए प्रदेशव्यापी आंगन मिलन सेवा अभियान चलाया जाएगा। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी 97,882 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित होगा। सागर पुलिस को जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में बड़ी सफलता मिली है। 30,000 रुपए के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मनीष लोधी और उसका साथी आशीष साहू दोनों घायल हो गए। बच्चों की कल्पनाशीलता, जिज्ञासा, संवेदना को साहित्य से जोड़ने के उद्देश्य से भोपाल में 26 अक्टूबर को बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 25 और 26 सितंबर को कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए।

शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, 8:35 और 10:20 पर। प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:40 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। सात बजकर 21 मिनट पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ब्रजेश नामदेव से ली गई भेंटवार्ता। विषय है रवि फसलों की बुवाई पूर्व तैयारी एवं बीजोपचार। साथ ही सुनिएगा लोक रंग। 8:00 विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स आप सुन सकेंगे रात 10:00। इसे भी हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 सुनिएगा कलाकार कीर्ति दुबे का उपशास्त्रीय गायन। राग होगा झूला ठुमरी मिश्र खमाज चेती मिश्र पहाड़ी। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडिया पे 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का लोक संगीत आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे उत्तम सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत।

उत्तम सिंह यादव और साथियों के गाय इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए साधना गोरे के गाए भजन और गीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: साधना गोरे के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाज़ लता मंगेशकर की, अनजान का गीत और संगीत कल्याण।

जानी दुश्मन। लीजिए सुनिए इस फिल्म से लता मंगेशकर को वर्मा मलिक का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए इस फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 होने को है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला स्केट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिणाम धालीवाल, रायसा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। आयुष्मान भारत योजना के आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिली है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाती है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से इस महीने की 28 से 30 तारीख तक बुलाई गई 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया और भोपाल में आज प्रदेश पुलिस की पहल पर 18वें शक्ति कैफे की शुरुआत हुई। ये कैफे जीआरपी मुख्यालय के पास संचालित किया जा रहा है। इसी मौके पर परिमल कैंटीन का भी शुभारंभ किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएस पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां। आज का ये कार्यक्रम कव्वालियों पर आधारित कार्यक्रम है महफिले समा।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में पांचवी कड़ी, जेल का साथी।

0: अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत के जुर्म में एक पढ़ा लिखा नौजवान जो देशभक्तिपूर्ण कविताएं, लेख और साहित्य लिखता था, वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसको बिलासपुर की जेल में कैद कर दिया गया। 12 नवंबर 1921 की बात है, जब लेखक को अपने काम करने के गुनहखाने में भोजन करने के लिए लाया गया तो उसके साथ उसकी पालतू बिल्ली भी आ गई।
1: अरे अरे अरे अरे, क्या कर रही है मिन्नी? कभी इधर भाग रही है, कभी उधर। अरे अच्छा, पास आ जा। देख देख, अगर नहीं आएगी पास तो मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। सुनती क्यों नहीं है?
0: बिल्ली खिलवाड़ में व्यस्त थी, वो आना नहीं चाहती थी। वो लेखक के काम करने के कमरे में उसके काले मोटे कंबलों और उसके जेल की जांघिया और कुर्ती को नोच नोच कर खिलवाड़ करना चाहती थी, क्योंकि लेखक का प्यार जो था।
1: अरे जांघिया छोड़कर कंबल से खेल करने लगी तू? रहेगी बिल्ली की बिल्ली, ना कुछ सुनना ना बात माननी, करेगी अपनी मर्जी।
0: लेखक बिल्ली को धमका रहा था, परंतु उसकी आवाज से प्यार साफ झलक रहा था।
1: करती रह तू अपनी मर्जी। जानती है मैं तुझे यहां क्यों लाया हूं? इधर आ, सुन, इधर आ, अपनी तन्हाई को बांटने के लिए। ये अकेलापन मुझे मार देता है, इसलिए तुझे मैं यहां घसीट ही लाया। अरे ये क्या कर रही है? अरे अब तू मेरे भोजन बनाने वाले कमरे में खेल कूद मचा रही है। हट उधर से। ओहो,
0: बिल्ली ने अब लेखक के भोजन बनाने वाले कमरे में खेलना आरंभ किया। पशु ही था वो, खेलते खेलते उसकी दूध दानी के पास गई और निसंदेह पीने ही की कोशिश में वो थोड़ा सा दूध औंधा बैठी। लेखक भले ही प्रेम का अवतार था, लेकिन इस हरकत पर तुरंत आग बबूला हो गया और बिल्ली पर दौड़ पड़ा।
1: अरे मिन्नी कमबख्त, भागती कहाँ है? ठहर, अभी बताता हूँ, अभी तेरी खबर लेता हूँ। दूध फैला दिया। अरे कोई अनाज वगैरह होता तो उसे समेट लेते, इस बिखरे दूध का क्या करूं मैं? इधर इधर इधर भाग कर रही, रुक इधर।
0: बिल्ली तेजी से भाग गई थी, लेखक पीछे चिल्लाता दौड़ा, पर वो क्यों हाथ आने को थी? इसी समय दूसरा कैदी शंकर उधर आ गया।
2: क्यों दद्दा भाई, किस पर झल्ला रहे हो?
1: अरे भाई शंकर, ये मिन्नी ने तो नाक में दम कर रखा है। कभी कंबल से, कभी जांघिए से, कभी कुर्ती से नोच नोच कर खिलवाड़ करती, तो कभी बर्तन गिराती है।
2: अरे कुछ खाने को ढूंढती होगी।
1: ये अंग्रेजों की जेल है। अरे जब हमें ही पूरा नहीं मिलता तो कहां से खाने को पा सकेगी? शायद इसलिए उसने दूध दानी।
3: तुम जानता है जेल में पालतू पशु रखना जेल का नियम का खिलाफ है।
1: जेलर साहब, जेल में बिल्लियां चूहों की सेना ना बनने देने के लिए घूमती रहती हैं। हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो चारों तरफ चूहे ही चूहे होते और उससे प्लेग भी फैल सकता है, जिससे तुम भी मर सकते हो।
3: क्या भागता है तुम? हम तो बदतमीजी करता है, हम तुमको सजा देगा। I will punish you. Idiot, nonsense, हमको बोलता है मरेगा, देखना।
0: जेलर चीख चाख कर चला जाता है तो लेखक और शंकर खूब हंसते हैं।
2: दादा भाई, आप जेलर को जब देखो तब चढ़ाते रहते हैं।
1: शंकर भाई, मैं राजनीतिक कैदी हूं, देश सेवा के लिए मेरा पाठ यह है कि अंग्रेज अफसरों की बात नहीं मानो, उनका अपमान करो।
2: इससे तो वो उग्र हो सकते हैं ना।
1: सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
2: देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: अरे रघु,
0: लेखक बिल्ली के लिए दूध लेकर काम करने की काल कोठरी की ओर बढ़ा। घुटनों तक का मोटा जांघिया, मोटी कैदियों वाली काली टोपी, गले में लोहे की बंगड़ जिसमें राजद्रोह की दफा 124 AK सजाया।

0: याफ्ता की तारीख, सजा होने की तारीख, सजा का परिणाम और छूटने की तारीख वाली टिकट लटक रही थी। यही उस समय कैदी के रूप में लेखक का अवतार था। लोहे का ठीकरा, जिसे जेल में तसला कहते हैं, लेखक उसी तसले में दूध लेकर जा रहा था। अभी भी मिनी उसके गुनहखाने में नहीं थी, शंकर वहां नहीं था। इसलिए लेखक ने दूसरे साथी कैदी रघुमणि से कहा,
1: भाई रघुमणि।
2: जी दादा, क्या बात है और इस तसले में क्या है?
1: रघुमणि, तसले में मिन्नी के लिए दूध है। अभी थोड़ी देर पहले उसे दो चपत लगा दी थी, तभी से रूठकर पता नहीं कहां भाग गई है।
2: भागकर कहां जाएगी दादा? चूहों से निपटने के लिए जो बिल्लियां यहां हैं, उन्हीं में से एक नया बच्चा ही तो है ये मिनी, अभी आ जाएगी।
1: वो नहीं आ रही है, कितने ही प्रयास तो मैं कर चुका हूं।
2: आप भी अजीब हैं दादा, कभी उसे चपतिया देते हैं, जब वो भाग जाती है तो परेशान होते रहते हैं।
1: भाई रघु, ये मिनी ही तो मेरे अकेलेपन का सहारा है।
0: तभी वहां पर जेलर आता है।
3: तुम अपने आप को लेखक बोलता है? कान खोलकर हमारा एक बात सुन लो।
1: जेलर साहब, आपको जो कहना है कहिए, हमारे दोनों कान खुले हैं।
3: हो, अपना आपको इज्जत देता है, हमारे कान खुले हैं ऐसा बोलता है? नो नो नो, ऐसा बोलो, मेरा दोनों कान खुला है।
1: जेलर साहब, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पूरी भारत माता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम का अर्थ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी हमारे भाई बहन आजादी की लड़ाई में एकजुट हैं।
3: तुम घुटना तक मोटा जांघिया पहना है, कैदी वाला काला टोपी तुम्हारा सर पर लगा है, गले में लोहा पड़ा है, ये सब बताता है तुम कैदी हो। और कैदी की औकात क्या है? जो चोर की औकात वही तुम्हारी औकात।
1: हम जेल में हैं वो इसलिए कि हम भारत माता को बेड़ियों में जकड़े नहीं देख सकते।
3: शट अप, शट अप योर माउथ। गले में पड़ा लोहे का बंगार देखो, इसमें साफ लिखा है तुम दफा 124A का जुर्म का कैदी हो। जानता है 124A दफा क्या होता है?
1: हाँ, हम जानते हैं दफा 124A क्या है।
3: बताओ, जस्ट हमको अभी बताओ उसका क्या मतलब है।
1: हमारी नजर में ये दफा राष्ट्र प्रेम है और तुम लोगों की दृष्टि में राष्ट्र

0: लेखक ने एक काम अच्छा किया था कि दूध का तसला पहले ही जमीन पर रख दिया था, अन्यथा वो गिर जाता।
1: दादा, आप व्यर्थ में जेलर से उलझते हैं।
2: अरे, मैं उसे इसलिए चढ़ाता हूँ कि वो मन ही मन जलता रहे और अपना खून सुखाता रहे।
0: इसी बीच शंकर नाम का कैदी भी वहाँ आ जाता है।
2: क्या हुआ दादा?
0: लेखक उत्तर देता, उससे पहले ही रघु बोल पड़ा।
1: शंकर भाई, दादा ने अपने स्वभाव के अनुसार जेलर को चिढ़ाया तो वो गुस्से में भर गया और दादा पर उसने रूल बरसा दिया।
2: अरे दादा, लगे तो नहीं दादा?
3: अरे भाई शंकर, हम तो आजादी के मतवाले हैं, ये रूल क्या चोट पहुंचाएंगे हम पर? हम तो गोलियां भी सीने पर खाएंगे तो भी मुंह से आ नहीं निकलेगी, बल्कि हंसते हुए सीने पर हम गोलियां झेलेंगे। अच्छा, तुम दोनों मिनी को ढूंढो। तुम लोग तो जानते हो मैं राजनीतिक कैदी हूं। मेरा कोठरी से बाहर घूमना, किसी कैदी से बात करना और किसी भी समय बिना काम किए खड़े रहना गुनाह है, इसलिए मैं बाहर उसे कहीं नहीं ढूंढ सकता।
2: दादा, तभी आप जेलर के आने पर हम लोगों से पहले दूर हो जाते थे।
3: बिल्कुल ठीक। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग उस निर्दयी जेलर की हिंसा का शिकार बन जाओ।
1: दादा, भले ही हम छोटे किस्म के चोर हैं, परंतु आपके साथ रहकर हमें ग्लानि हो रही है।
2: आज हम सोचते हैं कि हम भी जेल में आप जैसा कोई काम करके आते दादा, तो हमारे घर वाले भी गर्व से कहते कि उनका शंकर देश के लिए जेल गया है।
1: मेरे घर वाले शर्मिंदा नहीं होते कि रघु साइकिल चुराने के अपराध में जेल गया है।
2: दादा, आप पारस हैं दादा, आपने अपने सानिध्य से हमें कुंदन बना दिया है दादा।
1: और अब अगर जेलर ने दादा पर रूल चलाया तो माँ कसम मैं उसका खून पी जाऊंगा।
2: खून पी जाएंगे।
1: हाँ।
3: मुझे खुशी है कि देश के लिए तुम लोगों में सद्भावनाएं जागृत हो गई हैं।
2: यह आपके ही गुणों का प्रभाव है दादा।
3: शंकर, जेलर की नजर में मेरे अकेले दफा 124 का मुजरिम होने के कारण मेरे गुणों को दोषों में बदलने का अवसर तो भरपूर है, और गुणों को भी नित्य दोषों में शुमार किए जाते देखना मेरी मजबूरी है।
0: रघु और शंकर दोनों कैदी बिल्ली को ढूंढने में जेल का कोना कोना छान मारते हैं, परंतु बिल्ली नहीं मिली।
1: दादा, बिल्ली कहीं नहीं मिली।
3: रघु, तुमने जो आकर कहा कि वो नहीं मिली, ये इनकार ही मुझसे मेरे विनोद की ही इनकार नहीं है, ये मुझसे मेरे आत्मसंतोष की इनकारी भी है। भाई शंकर, मेरी मारी हुई दो चपतें जेल के कोने कोने से मेरे पालतू प्राणी को निकाल बाहर कर चुकी है। मैंने क्यों मारा उसे शंकर भाई? रघु भाई, मैंने मिन्नी को क्यों मारा? क्यों मारा? केवल इसलिए कि उसने दूध ढुलका दिया, या इसलिए कि मैं आदमजात हूं और मानव रूपधारी प्राणधारियों से अधिक पवित्र मुझे उसका अपने मुंह से मेरे बर्तन का भारी भाग तक छू जाना बर्दाश्त ना हुआ था?
0: लेखक अपने लोहे के तसले में दूध लिए प्रतीक्षा करता रहा, परंतु मिन्नी नहीं आई। लेखक बिल्ली की म्याऊं सुनने को तरस रहा था। अब उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने बिल्ली को चपतिया दिया था। ममताहीन लातें खाकर खुशामद तो पशुत्व से भी नीचे की चीज है। पशु भी लातें खाकर खुशामद नहीं करते। स्नेह और सेवा का साथी वो पशु क्यों लौटता?
2: अरे अरे, मिन्नी आ गई। शंकर, रघु, तुमने सुना मिन्नी की आवाज? मेरी मिन्नी आ गई।
4: नहीं दादा, हमने तो नहीं देखी मिन्नी।
2: हा?
1: जब वो यहाँ है ही नहीं तो उसकी आवाज कहाँ से आएगी दादा?
4: दादा, आप बिल्ली के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए आपके दिलो दिमाग में उसी की आवाज

0: गूंज रही है।
1: मार खाकर कौन फिर उसी जगह लौटेगा जहां मार पड़ी हो।
0: दादा, पशु भी वहां आने से बिदकते हैं।
1: तुम ठीक कहते हो रघु, ऐसी सत्ता मिन्नी क्यों स्वीकृत करती रघु।
0: आपने ठीक कहा है दादा।
1: शंकर भाई, मैं तो अब ये भी सोच रहा हूं कि जब मिन्नी को पता है कि उसमें लपकने की तैयारी, उछाल मारने की ताकत और दबे पैरों जाने की सावधानी है, शक्ति का इतना खजाना रखकर उसे किसी का आश्रित रहने की क्या जरूरत है।

0: कितनी मधुर आवाज थी। पता नहीं उस आवाज में ही वो माधुर्य था या लेखक की क्रूरता के अतिरेक के खिलाफ आत्मचिंतन ने उसकी उस आवाज में लेखक के जी में सहम कर छुपे हुए माधुर्य का उसकी आवाज पर आरोप कर दिया था। लेखक दूध का तसला लेकर पुचकारता हुआ दरवाजे की तरफ झपटा।
1: आजा, आजा बेटा, इधर आ, ले दूध पी ले। ओह, ये सीखचों वाला दरवाजा बंद है।
0: सीखचों वाले दरवाजे में बाहर से लंगर पड़ा था। एक तो अंदर के कैदी का हाथ लंगर तक पहुंच ना सकता था, दूसरे दरवाजे में ताला पड़ा था। जेलर बैरिक के दूसरी तरफ घूमता हुआ निकल गया था। लेखक और मिनी की वो ममताएं थीं। लेखक बोलकर कैसे क्षमा प्रार्थना करता और ना समझी जाने वाली भाषा बोलने वाली मिनी अपने कर्तव्यों से ही अपना मन एक दूसरे के प्रति जताया करते थे।
1: जी चाहता है ताला तोड़ दूं, दुबला हूं, ये तो ठीक है, पर वाह रे जी, कैसा बावला ये जी है। अरे रघुमणि।
2: जी दादा। जरा दरवाजा तो खोलो। अच्छा दादा। लो दादा, दरवाजा खुल गया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रघु, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दरवाजा खुलने की आवाज पर रोज मिनी दरवाजे के सींचों पर चढ़कर अपनी भक्ति प्रकट किया करती थी, किंतु आज वो म्याऊं भी करती जाती, लेखक की ओर देखती भी जाती, पर दूर भागती भी जाती।
1: क्यों तंग कर रही है मिनी? हाँ, कभी बिना पुचकारे तू मेरे पैरों पर से, मेरे जांघिए पर और फिर कुर्ती पर चढ़ते हुए मेरे कंधे पर चढ़ जाती थी। पर आज मैं प्यार से बुला रहा हूं, पुचकार रहा हूं, हाथ में दूध का बर्तन है, फिर भी नहीं आ रही। हाँ?
0: लेखक के हृदय में पश्चाताप के भाव थे, परंतु बिल्ली पर वो असरकारक नहीं हो रहे थे। दिन के 2:30 बजे थे। लेखक की छाया जमीन पर पड़ रही थी, परंतु मिनी छाया के छोर से भी आगे खड़ी थी। क्रूरता से मनुष्य पशुओं तक का विश्वास पात्र नहीं रह जाता। मिनी फिर भागने को हुई।
1: ठीक है मिनी, मनुष्य इतना ही बेकार है। यदि मुझे मालूम होता कि मेरे प्रेम का भाव तुझे पकड़ने के लिए और पुचकार तुझे जोर से ठोकर मारने के लिए है, तो तू मेरे पास आने की गलती ही क्यों करती? किंतु मैंने राजनीति पढ़ी है, तुझे मालूम है, तू अपने कोमल पैरों के तेज नाखूनों को निकालकर मेरे साथ खेलती, किंतु मैं उस समय चाहे तुझे कितनी दूर उठाकर फेंक देता, पैर पकड़कर खींच लेता, कान पकड़कर कानों के सहारे लटकाए रहता, टांग पकड़कर छोटे से खिलौने के मुगदर की तरह तुझे घुमाता और पूंछ पकड़कर किसी दीवार या कैदियों के सोने के चबूतरों पर से नीचे खींच लेता, किंतु खुले नाखूनों में भी तू मुझे नाखून गड़ न जाए इस बात से सावधान रहती। तेरे मरने जीने के प्रति रहने वाली मेरी उपेक्षा में भी तेरा स्नेह, तेरी सावधानी कायम रहती। मैं नाखून काट डाल

0: किंतु बिना नाखूनों के नाखून मंदों को हराने में कमी नहीं करता।
1: पिल्ली दूर से ही म्याऊं म्याऊं कर रही थी। लेखक के मनाने पर भी पास आना संभव नहीं हो रहा था। लेखक दूध का तसला लेकर आगे बढ़ता है। तसला दूर रख दिया। वो तसले से दूर बैठ गया। इच्छा थी मिन्नी दूध भर पी ले, फिर चाहे जहां जाए। लेखक 33 बरस 7 मास का था और मिन्नी केवल 1.5 मास की।
0: रात में कितनी ही बार बिस्तर पर वो उछल कूद मचाती। दिन भर काम करते हुए मुझ राजनीतिक कैदी का, जो जेल में हत्या के कैदियों से भी भयंकर माना जाता है, का जी बहलाती। आज वो कांपकर भागती है मुझसे।
1: उसकी म्याऊं म्याऊं कहती है कि वो पुनः कमरे में आ जाए, परंतु उसकी आंखें कहती हैं ये मनुष्य है, तिस पर पढ़ा लिखा लेखक।
0: अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा मिन्नी। ऊंची काली दीवारें होंगी, काले काले सीखचे। मिन्नी मेरे एकांत का निष्पाय साथी थी, जो हृदय को गुदगुदी, हाथों पैरों की दौड़ धूप और चपलता, मन को सादगी और अमर मुस्कुराहट देती। शायद वो कहती थी, लो सीख जे राम, अब हम तुम अकेले रहेंगे।
1: लेखक ने देखा मिनी धीरे से तसले के पास आई और फिर लौट गई। लेखक को उसके दूध पीकर लौट जाने का विश्वास था। लेखक ने थोड़ा सा दूध एक पत्थर पर डाला, वो फिर भी नहीं आई। लेखक ने पूरा तसला रख दिया था और खुद दूर जाकर बैठ गया। इस बार मिनी आगे बढ़ी, उसने दूध पीना शुरू किया।
2: देखो दद्दा, देखो बिल्ली दूध पी रही है।
3: आखिर आप पर रहम आ ही गया।
1: लेखक धीरे से उस तसले के पास आया, वो भागी पर लौटकर फिर तसले के पास आ गई। पेट तेरा बुरा हो, लेखक ने धीरे से पीठ पर हाथ फेरा। उसने पूंछ हिला हिलाकर उसकी स्वीकृति दी। दूध पी लेने के पश्चात वो धीरे से उसकी गोद में आकर बैठ गई। मैं अपनी काल कोठरी में उठा लाया। सन बढ़ चुका, सवा शेर का टांच पूरा कर चुका।
0: मैं ये कहानी लिख रहा हूं, वो मेरे कंबलों और मेरे कपड़ों से खिलवाड़ कर रही है। जेल का रूठा साथी अब मन गया है।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की पांचवी कड़ी। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण होगा।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक।

0: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग के अनुसार उसने हाल के महीनों में देश भर में कई फैसले लिए हैं। आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्थान में विचारों और टिप्पणियों के अंतर विचार विमर्श का एक सामान्य हिस्सा है और ये अंतिम निर्णय लेने से पहले की प्रक्रिया का ही भाग होता है। गृह मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के विशेष अभियान का 6ठा चरण चलाएगा। यह अभियान अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होकर 31 तारीख तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया है, जबकि हरीश द्विवेदी बिहार का दायित्व संभालेंगे। माय भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म पर युवाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 13,508 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। इन ओजस्वी पंक्तियों के साथ युववाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को सौम्या शिंदे का प्यार भरा नमस्कार। हर शाम की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ हमारे ज्ञान को नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें अपने देश, अपनी संस्कृति और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से भी जोड़ती हैं। आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज हम याद करेंगे हिंदी साहित्य के उस महान रचनाकार को जिसकी कलम में ओज था, विचारों में क्रांति थी और शब्दों में राष्ट्र प्रेम की आग थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को। इसके साथ ही चर्चा होगी भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद की और उस भाषा की जो बिना आवाज के भी दिल की बात को दिल से जोड़ देती है, यानी कि सांकेतिक भाषा। तो आइए आज के इस युववाणी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस महान कवि को याद करते हुए जिसने अपनी कविता के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जगाने का काम किया। 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर हिंदी साहित्य में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। नाम था रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को राष्ट्रकवि कहा गया, लेकिन उनके लिए कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, उनकी कविता एक आवाज़ थी अन्याय के विरुद्ध। उनकी कविता एक चिंगारी थी युवाओं के भीतर साहस जगाने की, और उनकी कविता एक संदेश थी अपने देश और समाज के प्रति जागरूक होने की। दिनकर जी का बचपन बहुत आसान नहीं था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और साहित्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उनकी रचनाओं में हमें भारत का इतिहास भी मिलता है, वर्तमान की चिंता भी और भविष्य का सपना भी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार और उर्वशी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी रचना रश्मिरथी में कर्ण का चरित्र केवल महाभारत की कहानी नहीं है, वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान की पहचान उसके जन्म से होती है या उसके कर्मों से। दिनकर जी के शब्द आज भी युवाओं को अपने भीतर की शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कविताओं में बार बार एक संदेश मिलता है, डरो मत, रुको मत, अन्याय के सामने झुको मत। और शायद यही कारण है कि आज भी उनकी कविताएं युवाओं के बीच उतनी ही प्रभावशाली हैं। दिनकर जी का साहित्य हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज जब हम उनके जन्मदिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमें केवल उनकी कविताओं को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना है। कविता हमें सपने देखना सिखाती है और विचार हमें उन सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं। दिनकर जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें एक ऐसा समाज था जहां व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। आज के युवाओं के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं। प्रतियोगिता है, तनाव है, असफलता का डर है और कभी कभी खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत भी है। ऐसे समय में दिनकर जी की लेखनी हमें यही सिखाती है, अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने कल के स्वरूप से कीजिए। हर दिन कुछ थोड़ा बेहतर बनिए, यही वास्तविक प्रगति है।

भारत केवल त्योहारों और परंपराओं का देश नहीं है, यह ज्ञान की उस धरती का नाम है जहां हजारों वर्षों से जीवन और स्वास्थ्य को समझने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी समृद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आयुर्वेद। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर

बना है। आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान, अर्थात आयुर्वेद का सरल अर्थ है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद हमें केवल बीमारी के समय उपचार के बारे में नहीं बताता, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर तथा मन के बीच संतुलन पर भी जोर देता है। आज हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज़्यादा व्यस्त हो गई है। सुबह की जल्दी, काम का तनाव, पढ़ाई का दबाव, मोबाइल और इंटरनेट का लगातार इस्तेमाल और अनियमित खान पान, इन सब के बीच हम अक्सर एक चीज़ भूल जाते हैं, अपना स्वास्थ्य। हम अपने मोबाइल की बैटरी को 10% होते ही चार्ज कर देते हैं, लेकिन अपने शरीर और मन की बैटरी लो होने पर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि आज हमें अपनी जीवन शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समय पर खाना, पर्याप्त नींद, रोज़ थोड़ा व्यायाम, तनाव को कम करने की कोशिश और अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आयुर्वेद की परंपरा में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का विशेष स्थान है। भारत की यह प्राचीन चिकित्सा परंपरा आज भी दुनिया के सामने भारतीय ज्ञान और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए केवल सोशल मीडिया की जानकारी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद या आधुनिक चिकित्सा किसी भी उपचार को अपनाने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। आयुर्वेद दिवस हमें अपनी परंपरा पर गर्व करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होने का अवसर देता है। तो आज क्यों ना हम अपने लिए एक छोटा सा संकल्प लें, अपने स्वास्थ्य को समय देंगे, अपने शरीर की ज़रूरतों को समझेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देंगे जितना शारीरिक स्वास्थ्य को। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। और इसी सकारात्मक भावना के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार सोचिए, अगर आपके पास बहुत कुछ कहने को हो लेकिन शब्द आपके साथ न हो, तो आप क्या अपनी भावनाएं खत्म कर देंगे? नहीं, क्योंकि भावनाओं की अपनी कोई एक भाषा नहीं होती। कभी आंखें बोलती हैं, कभी मुस्कान बोलती है, और कभी हाथों के संकेत बिना एक भी शब्द बोले पूरी बात कह देते हैं। हर वर्ष 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और बधिर समुदाय के अधिकारों एवं समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा केवल हाथों से किए जाने वाले कुछ इशारों का नाम नहीं है, यह एक वास्तविक भाषा है जिसके माध्यम से लोग विचारों, भावनाओं और अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद सांकेतिक भाषा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर हम केवल कुछ बेसिक साइंस भी सीख लें तो शायद किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करने में मदद कर सकते हैं जिसे इसकी ज़रूरत हो। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा रवैया। किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी को उसकी पूरी पहचान नहीं बना देना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी कमी से नहीं, उसकी क्षमता से देखना चाहिए। आज दुनिया में इंक्लूजन की बहुत कमी है, और जब बात होती है इंक्लूजन की, तो वह केवल किताबों में ही शामिल नहीं होना चाहिए, केवल वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। स्कूलों में, अस्पतालों में, सार्वजनिक स्थानों पर और रोज़मर्रा के जीवन में हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि मैं भी इस समाज का बराबर हिस्सा हूँ। एक संवेदनशील समाज वही है जहाँ हम केवल अपने लिए नहीं सोचते, जहाँ हम यह भी सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी तरह किस तरह जुड़ सकता है, सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसलिए आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस पर हम एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, कम से कम कुछ बेसिक साइन लैंग्वेजेस जेस्चर सीखें। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उससे संवाद करने की कोशिश करने से डरे नहीं, क्योंकि भाषा अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं अलग नहीं होती। और इस खूबसूरत संदेश के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: अरे अरे ए,

आज के इस कार्यक्रम में हमने तीन अलग अलग विषयों को जाना। पहले हमने याद किया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को, जिन्होंने हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम का संकेत दिया। फिर हमने बात की आयुर्वेद की, जो हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर देखने की प्रेरणा देता है। और अंत में हमने समझा सांकेतिक भाषा का महत्व, जो हमें संवेदनशीलता और समावेश की सीख देता है। अगर इन तीन विषयों को एक साथ देखें तो एक बहुत सुंदर संदेश सामने आता है। दिनकर जी हमें मजबूत विचार देते हैं, आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन की सीख देता है, और सांकेतिक भाषा हमें संवेदनशील हृदय रखना सिखाती है। यानी एक बेहतर समाज के लिए हमें चाहिए मजबूत विचार, स्वस्थ शरीर और संवेदनशील मन। आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता दोस्तों, और अब हमारी आज की मुलाकात अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है। लेकिन जाते जाते आज के तीनों सीखों को हम अपने साथ लेकर ज़रूर जाएंगे। दिनकर जी की तरह हम अपने विचारों में साहस रखेंगे, आयुर्वेद की तरह हम अपने जीवन में संतुलित बना के रखेंगे, और सांकेतिक भाषा को अपने जीवन में ज़रूर समावेश करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी केवल अपने लिए आगे बढ़ने का नाम नहीं है, सच्ची सफलता तब है जब हमारी तरक्की के साथ साथ हमारे आसपास का समाज भी आगे बढ़े। तो आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, सीखेंगे भी, स्वस्थ भी रहेंगे और संवेदनशील भी बने रहेंगे, और अपने देश और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं सौम्या शिंदे आप सभी से लेती हूँ विदा। आप सुनते रहिए युववाणी। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहें। इसी उम्मीद के और विश्वास के साथ नमस्कार।

अभी आप आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान में सुन रहे थे युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर

0: राज्य रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिलाजुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती? जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अगली आवाज सुनिए दिलजीत दोसांझ, नीरज श्रीधर और पिटबुल की फिल्म भूल भुलैया 3 से। इसके बोल लिखे हैं ध्रुव योगी, समीर और पिटबुल ने और संगीत है तनिष्क बागची, प्रीतम का।
1: Let's set the world on fire.

अंग्रेजी मीडियम फिल्म से अगला गीत सुनिए तनिष्का सांघवी की आवाज में। जिगर सरैया के बोल हैं और संगीत है सचिन जिगर का।

अगली आवाजें सुनिए शाश्वत सिंह और अरिजीत सिंह की फिल्म लव आजकल से। इरशाद कामिल के लिखे हुए बोलों को संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

दिल बेचारा फिल्म से अगला गीत सुनेंगे आप एआर रहमान की आवाज़ में। संगीत भी एआर रहमान का है और शब्द हैं अमिताभ भट्टाचार्य के।

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: छोड़ी मध्य प्रदेश है, इस समय हमारे स्टूडियोस की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा में आज महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले ही एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयुर्वेद दिवस पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें प्रदान की। इसके अंतर्गत 184 करोड़ रूपये की लागत से बने 25 आयुष भवनों, अस्पतालों और महाविद्यालयों की सौगात प्रदेशवासियों को सौंपी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति, पूरी हो चुके कार्यों के लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों की सतत और सघन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत सेवा मेरा योगदान अभियान 2 से 10 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा। अभियान द्वारा समाज के हर वर्ग को सेवा कार्यों से जोड़ते हुए जन भागीदारी को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच ने आज महिलाओं से जुड़े विभिन्न गंभीर मामलों की सुनवाई की। बेंच के समक्ष कुल 38 प्रकरणों में आवेदक और अनावेदक उपस्थित हुए। इनमें महिला प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, यौन शोषण, हिंसा, हत्या और विभागीय विवाद सहित अन्य मामले शामिल थे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल।
1: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
1: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
1: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे, लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए

0: चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
1: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
0: जी,
1: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
0: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
1: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी, लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
0: बिल्कुल।
1: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए, लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
0: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है।
0: जी।
1: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई।
0: जी।
1: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
0: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
1: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी।
0: जी।
1: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
0: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए।
1: जी।
0: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
1: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था, और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है।
0: जी।
1: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है।
0: जी, एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
1: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
0: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
1: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है, और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है, और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
0: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक।
1: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
0: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है, और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है, जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहां एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: लेते जाते।
1: किसी एक दिन
2: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
1: देखो डाकी आया।
2: चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
4: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
3: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
4: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
3: नेटवर्क क्या होता है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
4: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
3: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
4: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
3: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
4: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
3: आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
4: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुँचाना ही हमारा काम है।
3: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
4: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
3: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, धन्यवाद डाकिया अंकल।
4: धन्यवाद चंचल।
5: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
9: आकाशवाणी।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय है महाकाल लोक, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान की मिसाल।
10: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए इन प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है। आज की हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक मिसाल से रूबरू करा रहे हैं, जहां सरकार की सोच और योजना ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है, और वो है हमारे देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तस्वीर। श्रोताओं, जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात होती है तो मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका निभाता नजर आता है। उज्जैन की पुण्य धरा पर श्री महाकाल लोक का निर्माण केवल एक स्थापत्य या निर्माण कार्य भर नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुद्धार का एक दिव्य प्रतीक बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश के इस अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इसकी उपलब्धियों और भावी रोड मैप पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास व्यक्तित्व। आप हैं सुप्रसिद्ध लेखक, संपादक, वरिष्ठ सांस्कृतिक कार्यकर्ता और प्रदेश के मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी। सर, आकाशवाणी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे महाकाल लोक की मूल संकल्पना को लेकर है कि एक सांस्कृतिक विशेषज्ञ और पूरे विजन के साक्षी होने के नाते आप श्री महाकाल लोक को किस दृष्टि से देखते हैं?
11: महाकाल लोक जो शब्द उसमें आते हैं, महाकाल है और उनका संसार है, उनका लोक है। तो महाकाल केवल उज्जैन वालों के लिए नहीं, केवल उस छोटे से भूमि का जो टुकड़ा है जहाँ पर महाकाल मंदिर अवस्थित है उसके नहीं, बल्कि वो यहाँ भी है, भोपाल में भी है, आकाशवाणी के इस केंद्र में भी है, दिल्ली में भी और दुनिया में भी है। महाकाल एक तरह से वो गौरव चरित्र हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है
12: जी।
11: और रचना के साथ साथ फिर वे उज्जैन में आकर विराजित है, लेकिन केवल विराजित होने से काम नहीं चलने वाला
12: जी।
11: महाकाल है ही नहीं, हो ही नहीं सकते जो चैन से बैठ जाए या कुर्सी टेबल हो या सिंहासन हो
12: जी।
11: तो मैं उस तरह से देखता हूँ कि वो महाकाल की तपोधरा है
12: जी।
11: वो लगातार तपस्वी के रूप में, हम सब जानते ही हैं कि उनका जितने भी रूप हम देखते हैं वो लगभग योग निद्रा में है, योग में है, तपस्या में है। तो तपस्या में कर क्या रहे हैं? तो तपस्या में वो बकायदा, चाहे फिर वो काल गणना की काल चिंतन की बात हो, नदियों के चिंतन की बात हो, पंच तत्वों के चिंतन की बात हो, चिंतन उनका नियंत्रण, उसको एक सकारात्मक दिशा में प्रवाहित और संचालित करने का काम
12: जी।
11: तो ये महाकाल की, महादेव की तपस्या है, और वो हमें खुद आनंद है, गौरव है कि मध्य प्रदेश महाकाल की तपोधरा का एक तरह से केंद्र है
12: जी।
10: बिल्कुल ठीक कहा आपने, भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक परंपरा का, तपस्वी परंपरा का केंद्र बनकर भी उभरा है महाकाल। जब हम किसी भी बड़े सांस्कृतिक गलियारे की बात करते हैं तो उसका प्रभाव केवल दीवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र के जनमानस और उसकी पहचान को एक नया आकार देता है। अगर हम महाकाल लोक की बात करें तो इसके लोकार्पण के बाद उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान में किस प्रकार का परिवर्तन आप देखते हैं?
11: देखिए, महाकाल लोक जाहिर है कि 4-5 साल उसको निर्मिति को उसके हो गए हैं। उसके पीछे एक तो भाव ये था पहले कि जो महाकाल में जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो उनको एक लंबे पथ से गुजरना होता है
10: जी,
11: तो धूप भी है बारिश भी है, और जो दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं तो कई बार वो जो भौतिक या जलवायु संबंधी जो दबाव रहते हैं, गर्मी लग रही है या पांव जल रहे हैं या प्यास लग रही है, तो भाव यह था कि जो भक्त जो आ रहे हैं वे लगातार ईश्वर का चिंतन करते रहे, महादेव का, महाकाल और उनकी जो तपश्चर्या जिसकी मैं बात कर रहा था, तो कम से कम उनको कुछ महाकाल के गर्भगृह तक जाने तक वे कुछ और सांसारिक योग सब छोड़ के आए, रोजी रोटी की समस्या छोड़ के आए हैं, घर के संकट छोड़ के आए हैं, जीवन के चुनौतियाँ छोड़ कर आए हैं, तो भाव ये था कि वो फिर अंत में जब यदि ईश्वर का चिंतन ही कर रहे हैं तो महादेव के जो तमाम तमाम जो आयाम है उनके कथाओं के, जीवन के, उनके द्वारा जो दिए गए संदेश हैं या उपदेश हैं जो भी हम समझें, तो उनके साथ एक तरह को उनका सुमिरन होता जाए और लोग जो है अंतलीन हों। उसका इम्पैक्ट की जो बात आपने कही, तो मजेदार बात यह है कि उज्जैन में पिछले 8-10 वर्षों में और विशेष रूप से ऐसे प्रयास घनीभूत हुए हैं, तो महाकाल की हमने सुध ली और इसके साथ साथ क्षिप्रा की हमने सुध ली, तो आप देखें कि उज्जैन जो है आज की तारीख में मध्य प्रदेश का कम से कम, ऐसे तो देश के भी दूसरे जो नगर हैं उसमें भी उसकी जो विकास की गति है उनसे बढ़कर है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से है। तो धर्म है या सांस्कृतिक है या अध्यात्म का जो विषय है वो एक रोजगार का, शहर की समृद्धि का, शहर के विकास का भी एक ताना बाना हो सकता है
10: जी,
11: एक संरचना हो सकता है। तो इसीलिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री जिस बात का उल्लेख करते हैं और मुख्यमंत्री भी जो प्रदेश के हैं वो भी उल्लेख करते हैं विरासत से विकास
10: जी,
11: तो महाकाल और महाकाल लोक क्षिप्रा का संरक्षण संवर्धन, इससे हम देख सकते हैं कि विकास की दिशा में भी उज्जैन पूर्वापेक्षा बहुत आगे बढ़कर सक्रिय है
10: जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अगला सवाल भी मेरा उसी पर ही है। संस्कृति और आस्था जब जन आंदोलन बनती है तो एक मन को नहीं बल्कि जनजीवन और आजीविका को भी समृद्ध करती है। धार्मिक पर्यटन जो विकसित हुआ, विशेषकर हम मध्य प्रदेश की बात करें महाकाल लोक बनने के बाद में, तो रोजगार के मोर्चे पर इसका क्या कुछ असर आप देखते हैं?
11: देखिए धार्मिक पर्यटन, पर्यटन शब्द एक बहुत ही आम बोलचाल का हिस्सा हो गया, लेकिन मैं जिंदगी को दूसरी तरह देखने की कोशिश करता हूं। जैसे महाकाल लोक है, इसमें उनके आकर्षण के लिए जो है समाज के आकर्षण के लिए अंत में महाकाल है, अंत में ओंकारेश्वर है, अंत में विश्वनाथ या सोमनाथ जो भी है, तो उनसे हमको साक्षात्कार करने के लिए हमको जाना जाती ही, क्षिप्रा में है या नर्मदा है या गंगा है, वहां पर हमको एक तरह से तीर्थ स्थान करने के लिए जाना ही है, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो हम उसको यदि सांस्कृतिक या धार्मिक पर्यटन की तरह से देखने की कोशिश करें तो कम से कम एक राज्य का जो कर्तव्य है कि वे समाज जहाँ जाना चाहता है, यदि उनको मान लीजिए कि बाजार में हाट में सामान खरीदने जाना है तो स्टेट का जो कर्तव्य है कि भाई उनके लिए सड़क और बाकी सुविधाएं पानी की रोशनी की हो जाए, यही राज्य ने महाकाल लोक में करने की कोशिश। लेकिन महाकाल की जो गरिमा है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है, उसको बगैर डाइल्यूट किए तभी वहाँ पर उसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले, और जिस तरह से वहाँ पर विकास का काम चल रहा है सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वाह के लिए या उनके पुनरावलोकन के लिए, आप पाएंगे कि अभी तो ये अंगड़ा ही है, अभी तो ये शुरू हुआ है, उज्जैन को अभी कुछ बहुत कुछ पाना बाकी है।
10: बिल्कुल ठीक है आपने, कहीं ना कहीं भारत की उस धार्मिक संचेतना को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लगातार अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। महाकाल लोक में शिवपुराण और पौराणिक कथाओं को स्थापत्य और स्कल्पचर के माध्यम से जो उकेरा गया है, ये नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहा है, जिसका हम सकारात्मक परिणाम भी देखते हैं, इसे किस तरह से देखते हैं?
11: युवा पीढ़ी जो है 5-10 वर्ष पहले तक सांस्कृतिक या धार्मिक परंपराओं से, आध्यात्मिक परंपराओं से विलग सी थी, अलग सी, ऐसा है नहीं, क्योंकि महाकाल लोक में जैसे जो प्रतिमाएं बनी है
10: जी,
11: उसमें दो तरह के कमियां थी, मतलब ये तो पथ पर हमने जब बढ़ना शुरू किया तो हम कई बार उसको पलट के देखते हैं कि हमने कितने पत्थर, कितने कंकड़, कितना कीचड़ से हम पार कर, तो जर्नी हमारी जारी रहती है। तो महाकाल लोक एक तरह की जर्नी है, यात्रा टूवर्ड्स अध्यात्म के लिए, अंतर मन के लिए, तो उसमें दो तरह के सीमाएं कमियां रही। एक ये जो फाइबर कास्ट जो हुआ था उसकी उम्र जो है बहुत ही सीमित होती है, और वो सब हमने सबने देखा भी, जबकि हम यदि यही देख लेते कि इसे महाकाल में जो ज्योतिर्लिंग है वो पत्थर से बने हुए हैं, और जब तक आप दुराग्रह के साथ उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ध्वंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चाहे वो भूकंप हो, चाहे फिर वो बारिश हो या तमाम आपदाएं हो, वो सतत खड़ा रहता है। और ऐसे पाषाण जो हैं उनकी उम्र जो है 100-200 साल नहीं, सैकड़ों साल, हजारों साल, लाखों साल है। दूसरी बात, उसकी एक जो कमी जो रह गई वो है कि भारतीय प्रतिमा विज्ञान के जो मानक हैं वो उसमें उसका प्रभाव हमको कम देखने को मिलता था, और जो एक के यूनानी जो स्कल्पचर की जो परंपरा है वो उसमें ज़्यादा हावी होते हुए नहीं रहती। तो अभी मध्यप्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्णय रहा है तो महाकाल लोक में अब भारतीय प्रतिमा विज्ञान के आधार पर, भारतीय परंपरा के आधार पर और पाषाण की या मेटल की धातु की मूर्तियाँ बनने का काम चल रहा है। उसी का संयोजन का दायित्व मुझ पर है
9: जी।
11: हम कर रहे हैं और जल्दी साल डेढ़ साल में सारी सारी जो मूर्तियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हो रही थी या क्षति क्षय होने की जिनकी आशंका है हम सबको रिप्लेस करने वाले हैं।
9: आज के दौर में विशाल जनसमूह का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और सबसे बड़ी लोगों की सुरक्षा जो उस जनसमूह के रूप में धार्मिक पूजा अर्चना के लिए आते हैं। महाकाल लोक में प्राचीन परंपराओं के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्राउड मैनेजमेंट का एक संतुलन दिखता है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं?
11: नहीं देखिए, जब हम चाहे वो पुरातन का विषय हो या अधुनातन का हो, हम जब तक हम व्यक्तिगत मंदिर बना रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, स्वांतः सुखाए अपनी जगह है। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए कि रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाए शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद अब वो स्वांतः सुखाए वाला विषय रह नहीं गया
9: जी।
11: तो तत्काल उसमें टेक्नोलॉजी आ गई कि प्रिंटिंग भी होगी, डिजिटल वर्जन भी आ गए, तो आप उसको आराम से जैसे सुविधा हो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको संग्रहित कर सकते हैं। इस ठीक यही बात कि महाकाल लोक की बात हो या उज्जैन में, और उज्जैन तो खैर एक तरह से धार्मिक शहर है, तो लगातार कुछ न कुछ वहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ होती ही रहती, और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के अनुसार ही होती हैं, क्योंकि वो ऐसा केंद्र रहा है जहाँ पर गौतम बुद्ध का भी आशीर्वाद उसको मिला है, महावीर स्वामी का भी मिला है, गुरु नानक का भी मिला है और रूमी का भी मिला हुआ है। जैसे तमाम जो लोग आते रहे, काम करते रहे, तो ये जरूरी है कि जो जनसंख्या या भावुक वर्ग की जो संख्या बढ़ रही, फिजिकली भी लोग जाते हैं, नदी नहाने जाएंगे, वो संख्या बढ़ जाती है, और आज की तारीख में ये महाकाल लोक के बाद, छिपरा के संरक्षण के बाद, उज्जैन में आज की तारीख में लगभग 1,00,000 लोग भक्त जन जो हैं वो रोज उज्जैन आते ही हैं दर्शन के लिए, ये संख्या भी और बढ़ना है। तो राज्य का जो दूसरे तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या और जो महकमे हैं, वो भी उसकी चिंता करते हैं। तो सड़क की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है और जन सुविधाओं की बात है
9: जी।
11: तो उस पर भी जन में बड़े पैमाने पे काम चल रहा है और पहले भी काम किया गया, इसके कारण आज हम 1,00,000 लोगों की भीड़ को बगैर किसी परेशानी के हम कर सकते हैं। तो शहर में बहुत सारा निर्माण भी हो रहा है, शहर बदल रहा है, शहर की आवश्यकताएं बदल रही हैं,
9: सिंगस्त को लेकर बहुत सारी तैयारियां चल भी रही हैं, वो कुछ दिखाई भी पड़ता है। भारत की आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से ही विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, और महाकाल लोक निर्माण के बाद से अगर हम बात करें तो दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान मध्य प्रदेश पर विशेषकर केंद्रित हुआ है। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक छवि के निर्माण में आप इसका क्या कुछ योगदान मानते हैं?
11: महाकाल की हम बात करें तो जैन जो है अपने जन्म से ही अंतर्राष्ट्रीय भी है, महाकाल तो है, ये 85वें कल्प जो हमारा चल रहा है, तो हमारी जो हिंदू परंपरा है वो बताती है कि एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन, तो उसमें केवल 4 अरब

31 करोड़ साल की गणना समाहित है। 84 महादेव उज्जैन में, दुनिया में और कहीं भी किसी भी शहर में 84 महादेव नहीं है। 84 कल्प हो चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं, हर कल्प के एक महादेव है। तो हर बार जो है उज्जैन जो है उसकी एक केंद्रीय भूमिका महादेव के कारण, महाकाल के कारण

0: वो अलग अलग दौर की अलग अलग कथाएं भी वो बखान करते हैं, और महाकाल के कारण, महादेव के कारण, क्योंकि उनके उनमें श्रद्धा रखने वाले, उनको चाहने वाले, उनसे प्रेरणा लेने और सीखने वाले जो लोग हैं दुनिया भर में, तो जो आने वाले समय में जल्दी सिंहस्थ जो तैयारी उज्जैन में मध्य प्रदेश में चल रही है, तो हम देखेंगे कि वो जो विश्व बिरादरी के जो लोग वो भी इसमें भागीदारी के लिए आ रहे हैं। और अभी भी जो धार्मिक जो तीर्थाटन जो चल रहा है, तो उसमें आज भी रोज भी देश के बाहर के जो नागरिक हैं श्रद्धालु आते ही हैं। महाकाल की एक बड़ी भूमिका आपके प्रश्न के संदर्भ में फिर से याद आई कि इस कल्प में जो देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ और फिर अमृत मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के देवासुर संग्राम की भूमि तो महेश्वर के पास में जो नर्मदांचल है वहाँ रहा है, और वामन अवतार का संदर्भ भी वहाँ आता है, और बलि जिनको बाद में सुतल लोक वहाँ गए भेजे गए, और उनके जो भक्ति भावना जो है उसके कारण दुनिया में अकेला ऐसा उदाहरण है जब ईश्वर ने, महाविष्णु ने उनका चौकीदार बनना स्वीकार किया रक्षा के लिए। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न मिले हैं उसमें जैसे कालकूट विषय है, हलाहल कहें जो कहें, तो महादेव ने, महाकाल ने सबसे पहले उसको धारण किया। अमृत मंथन का जो सारा विषय है, सारे जो रत्नों का वितरण, वो सब उज्जैन में हो रहा है। ऐसे उज्जैन जो है उस तरह से तमाम जो महान जो घटनाएं घटी हैं कल्प की, उसका भी वो साक्षी और उसका क्रीड़ा स्थल भी रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। जिस सहजता और गहराई से आपने महाकाल लोक से प्रदेश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, वो वास्तव में प्रेरणादायी है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उसका संवर्धन करना, आधुनिकता के साथ सामंजस्य बैठाना, ये किसी भी जीवन समाज की पहचान होती है। मध्य प्रदेश आज इसी पथ पर अग्रसर होकर न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, विषय था महाकाल लोक, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान की मिसाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब आनंद लीजिए यलगार फिल्म से। इस गीत का कुमार सानू और सपना मुखर्जी की आवाजें हैं, सुदर्शन फाखर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है चन्नी सिंह का।

अगली आवाज सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की फिल्म याराना से। माया गोविंद के लिखे हुए बोल को संगीत में पिरोया है अनु मलिक ने।

0: और इस गीत के साथ अब फिल्म संगीत यहीं संपन्न।
1: स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन

0: देश में सुगमता का मंत्र बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
4: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
3: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों की प्रभावी ढंग से निभा सकें।

0: भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन IOC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का IOC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंगतियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण सुनिए। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 बजे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुनेंगे। शाम 8:35 और रात 10:20 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में कार्यक्रम चर्चा का विषय है सुनिएगा और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स सुनिएगा और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी प्रस्तुत होगा। अब सुनिए कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे कल गुरुवार यानी 24 सितंबर की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना कार्यक्रम और 6:40 पर 6:30 पर श्री रामचरित मानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:25 पर विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। दोपहर 12 बजे और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। कल दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की

की 6वीं कड़ी सुनिएगा। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और कल शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति में सुनेंगे। कल शाम 5:33, 6:30, 8:35, रात 9:30 और 10:20 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रस्तुत होगा। कल शाम 7:25 पर बुंदेली समाचार सुनिएगा। शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुत होगा। कल शाम 8 बजे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगी एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में कलाकार अभय प्रवीण जुगलबंदी में बांसुरी वायलिन जुगलबंदी का आनंद लीजिएगा। राग होगा बेहाग। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब समय है प्रादेशिक समाचार का।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत योजना के 8 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 60 करोड़ लोगों को मिल रही है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 11वीं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। 25 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान अभियान 2 से 10 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना के आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिल रही है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बनाती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केन्द्र का नया नाम आरोग्यम धाम जारी किया और स्वास्थ्य तथा आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत भी की। इसी मौके पर खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में बना हर्बल गार्डन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश में 25 सितंबर को भोपाल के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले चरण में 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड सहित 7 शहरों से शुरू होंगी। योजना के तहत प्रदेश में करीब 15,000 आधुनिक बसें चलाई जाएंगी, जिनसे रोजाना 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, यात्रियों खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों से सीधे संवाद किया और कृषि क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। इस दौरान खेती में नए नवाचारों, वैज्ञानिक तकनीकों और उन्नत तौर तरीकों की जानकारी भी साझा की गई। राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष के तहत यह आयोजन प्रदेश

0: के सभी जिलों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में श्री अन्न योजना ने भी किसानों और आमजन के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। आइए जानते हैं ये योजना कैसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत अनूपपुर जिले में श्री अन्न मिलेट मोटा अनाज के व्यावसायिक उत्पादन को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले कोदो और कुटकी मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में भी शामिल है। राज्य में इसकी खेती व विपणन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम समन्वयक शशांक सिंह ने बताया,
2: स्व सहायता समूहों द्वारा विभिन्न आजीविका गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है आजीविका कोदो प्रसंस्करण इकाई, जो कि यह इकाई 2023 में प्रारंभ हुई थी और निरंतर उसमें उत्पादन कार्य चल रहा है। एक जिला एक उत्पाद के रूप में भी यह हमारा कोदो चिन्हित है। हमारा प्रयास है कि हमारे समूह की दीदियां इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहें और उनके लिए आय के अतिरिक्त स्रोत सृजित होते रहें।
1: प्रमला सिंह गणेश स्व सहायता समूह धरकला ने बताया,
3: इकाई में 6 से 8 दीदियां काम करती हैं। तैयार कोदो को हम पैक करके अनूपपुर, शहडोल, भोपाल, लोकल बाजार, हाट आदि में विक्रय करते हैं। साथ ही हम कोदो बिस्किट के लिए इकाई को कोदो विक्रय करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: प्रदेश में सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन शुरू किया है। अब तक 13,508 किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है। इसके लिए प्रदेश में 1100 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति और लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए सतत और सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम संस्थाएं ही लोकार्पण के लिए तैयार हो पाई हैं, इसलिए विलंब के कारणों की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का नया प्रदेश प्रभारी और रेखा वर्मा को सह प्रभारी बनाया है। बिप्लव देव अब तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. महेंद्र सिंह का स्थान लेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज ये नई सूची जारी की, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा ने ब्रजगोपाल लोया को नया प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है, जो पूर्व मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे। भारत को एशियन गेम्स में 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में पदक मिला है। ये पदक मीराबाई चानू ने दिलाया है। मीराबाई महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया। इससे पहले 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। एशियन गेम्स के चौथे दिन 2 पदक शॉटगन शूटिंग के स्किट टीम स्पर्धा में भी आए हैं। पुरुष टीम ने शूट ऑफ में कजाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। एक पदक सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने दिलाया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के 26 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई, जिसमें शहडोल के गोहपारू में सबसे ज्यादा 2 इंच पानी गिरा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने अब दाव के असर से 26 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। विभाग ने आज के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई अन्य जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज समन्वित कृषि विकास कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत एनएसएस और रेडक्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। शिवपुरी जिले के फतेहपुर स्थित CWSN छात्रावास में आज विश्व साइन लैंग्वेज डे मनाया गया। धार में

आगामी त्योहारों के तहत जिला मुख्यालय पर शांति समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सागर में 115वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक आज बैंक कलेक्टर और बैंक प्रशासक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुरैना कलेक्टर ने टीएल बैठक में जन विश्वास अभियान और जनसंवाद में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। अनूपपुर जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित भारत की संकल्पना विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जनसेवा संकल्प यात्रा ने आज आगरमालवा जिले के ग्राम बरगड़ी से जिले में प्रवेश किया, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जन जल सेवा की दो यात्राएं 24 और 25 सितंबर को बैतूल जिले से होकर गुजरेंगी। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह के तहत प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर में 24 सितंबर को एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम में मिशन वात्सल्य के तहत नर्मदापुरम स्थित वन स्टॉप सेंटर में अनचाहे नवजात शिशुओं को सुरक्षित आश्रय देने के लिए पालना स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना प्रिय कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले हमें सभी किसान भैया बहनन का बिजलता बहन की दोई हाथ जोड़ के नेभरी राम राम। और भैया हरो आप और हैं सभी लोग राजी खुशी हुई हैं, काहे कि देखो भैया हरो हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि सभी के घर परिवार बाल बच्चा कुशल मंगल स्वस्थ और निरोग रहे, सबन की जो है जीवन नीको चलत रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना शुरू करते हैं। और भैया सभी के जो है काम धंधे व्यवसाय सभी कार्य और कारोबार भी अच्छी तरिया से चलत रहें, जासों का है कि सभी की जो है आमदनी बनी रहे और समय से जो है सभी काम काज भी होत रहें तो जीवन में खुशहाली भी बनी रहते। और जब आय को जो साधन अपने पास होते तो भैया देखो सीधी सी बात है और घर के खर्चा पानी और ज़रूरत की चीज़ें समय पर जो है प्राप्त होते हैं तो भैया हरो जब ही जो है परिवार की जो है वृद्धि और संपन्नता भी बढ़ते हैं। जब हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, समय समय पर जो है कार्यों को पूरा करते हैं तो भैया हरो जो है हमारे महापुरुषों ने विशेषज्ञों ने हमारे कवियों ने हमारे वेद पुराणों में जो कहावत बताई गई है कही गई है लिखी गई है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जसु कराएं सो तसु फल चाखा, ये बात भैया हरो बिल्कुल साँची है। तो भैया हरो कर्म की प्रधानता सबसे बड़ी है। जब अपन कोनो काम काज को जो है नहीं करेंगे और हाथ पे हाथ धर के जो है बैठे रहेंगे तो भैया हरो कैसे जो है काम पूरा होवेगा। और जब जैसे रोजमर्रा के खर्चा पानी है तो भैया

रो धन की जो आवश्यकता, तो सभी को जो है पड़ते कि नहीं, बिना पैसा रुपया के तो कोनो भी कार्य जो है समय पे नहीं होते। और देखो भैया, जरूरतों की पूर्ति भी व्यक्ति को जब ही कर सकते हैं जब बाको जो है बाके पास पैसा है, धन है। और भैया बिना कार्य किए धन की भी जो है, जैसे धन भी जब ही कमा जा सकते है, धन भी नहीं कमा जा सकते बिना पैसा रुपया। तो देखो काम काज की भी आवश्यकता शुरू पड़ता है धन कमावे के लिए, पड़ता है कि नहीं। अब भैया हरो कछु ऐसे कार्य भी हैं जिनके द्वारा हम धन जो है उपार्जन यानी इकट्ठो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। और भैया हरो देखो शासन द्वारा भी ध्यान सो दो जा रहा है, कई तरह की जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह योजना भैया हरो बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक योजना है, जो हमारे देश के लिए सभी लोगों के लिए इको जो द्वारा जो है कार्य जो कर रहे हैं। तो जैसे कि बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, मूर्तकार है, चर्मकार है, धोबी है, दर्जी है, आदि जो है जो शामिल करे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत भैया हरो शिल्पकारों और कारीगरों को भी जैसे प्रमाण पत्र है, IDT कार्ड है, इनके जरिया जो है पहचान भी दी जा रही है, उन्हें मिल रही है। और जैसे 5% की जो है रियायती दर के साथ साथ जैसे 1,00,000 रुपया जो पहली किस्त होते हैं और 2,00,000 रुपया दूसरी किस्त के जो है ऋण की सहायता जो है दी जाता है। और भैया हरो 17 सितंबर 2023 जो है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च होने वाली जो है PM विश्वकर्मा योजना का जो है उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्धि परंपराओं को संरक्षित जो है कर उनका जो है विकास करना है, और उन्हें सामान यानी कि औजारों के लिए 15,000 रुपया उन्नत किस्त औजारों खरीदवे के लिए जो है प्रदान करना है। तो भैया हरो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिन्हें हमारे भैया बहनों के पास जैसे पर्याप्त धन नहीं है जो कि अपनों जो है निजी बिजनेस कर सके, अपनों व्यवसाय धंधों कर सके, जो अपनों कार्य करने के लिए जैसे सक्षम नहीं है, और भैया नाई है, दर्जी है, धोबी है, बढ़ई है आदि, तो ये लोग जैसे अपनों कार्य शुरू करें के अपने लिए जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जैसे 5 दिन को जो है प्रशिक्षण और करके जो 15,000 रुपया की राशि जो है उन्हें मिलेगी तो दई जाओगी। तो जासो काय के भी अपनों औजार हैं और आवश्यकता की जैसे चीज़ें हैं खरीद के अपनों कार्य शुरू कर सकें, और आगे जैसे कामों में बढ़ाने से उन्हें और भी धन की भी बढ़ोतरी होते है। तो यह काम हर जो व्यक्ति कर सकता है जो अपने कार्य में माहिर है, मकान बनाने में जैसे झाड़ू बनाने में, चटाई बनाने में, डलिया बनाने में, गुड्डा गुड़िया बनाने में, जो है खेल खिलौने बनाने में, ताला बनाने में और सिलाई करवे में, मछली को जाल बनाने में, और जैसे मिट्टी के बर्तन खिलौने बनाने में, तो जिनकी जैसे और भैया जिनकी आयु कम से कम 18 से 40 वर्ष हो और आवश्यकता दस्तावेज भी है जैसे राशन कार्ड है, बैंक डायरी है, प्रधानमंत्री के जैसे उनके जो विश्वकर्मा योजना के तहत जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए जैसे आधार कार्ड है, फोटो है, तो भैया हरो जी सब अपने देखें प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया हरो जो तो चर्चा भाई अपनी प्रधानमंत्री जो है विश्वकर्मा योजना की। अब जैसे कार्य को आगाऊ बढ़ावे से पहले अब अपने भैयन को सुनवाते हैं जो प्यारो सो लोक भजन यानी गणेश भजन हरनाम सिंह कुशवाहा और साथी अंत्य। पर भैया बासे पहले अपन लेते हैं तनिक विराम और सुनते हैं कछु संदेश।

0: देश में सुगम आगमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, भरपूर रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रोड, 3,000 इंटरसिटी रोड और 436 अंतर्राज्यीय रोड विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: हाँ भैया, तो गीत और संदेशन के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। अपने सभी श्रोता भैयन को बहनन को करते हैं स्वागत। और भैया देखो, जो हमारे कार्यक्रम को बड़े ही आनंद से सुन रहे हैं, और भैया देखो आज है बुधवार, तो बुधवार को आप लोगों को लेकर आते हैं हम आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर प्राप्त मौसम की जानकारी एवं कृषि सामाहिक सलाह। तो हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह, तो आओ भैया सुनते हैं।
3: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राज माता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको हमेशा की तरह मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीपीएस चौहान साहब आपको किसान भाइयों को मुर्गी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप मौसम के बारे में जानिए। पिछले सप्ताह का मौसम, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गति के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम बादल रहे तथा हवा लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 36 से 37 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 77 से 81 और शाम को 63 से 79% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल रहने तथा हल्की वर्षा होने का अनुमान है एवं हवा लगभग 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, दक्षिण और पूर्व उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 35.2 से 35.9 और न्यूनतम तापमान 25.6 से 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता सुबह 75 से 78 और शाम को 60 से 63% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम में हल्की वर्षा का अनुमान को देखते हुए जो कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, संभावित मौसम में हल्की वर्षा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दर्शाई गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वर्षा न होने की संभावना को देखते हुए सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही किसान भाई, फसलों और सब्जियों में इस समय फसलें तो लगभग पकने की अवस्था में, सब्जियों में कीट व्याधि का नियंत्रण करें और फसल की हिसाब से बात करें तो इस समय अरहर की फसल जो बहुत देरी से बोई गई है, किसान भाइयों ने बाद में बोई है, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण इस समय कर सकते हैं। उनकी फसल है 25 से 30

0: अवस्थी अवस्था पर हो। साथ ही साथ भाई उर्द और मूंग की बात करें तो इस समय उर्द और मूंग पकने की अवस्था में है। उर्द और मूंग की पकी हुई फसल की कटाई कर मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए उन्हें सुरक्षित खलिहान पर रखें। अगर मौसम साफ बिगड़े तो उन्हें सुखाकर उसकी गाई करें। साथ ही साथ भाई तोरिया की बात करें तो इस समय तोरिया की वायु तो तापमान बिल्कुल अनुकूल है और इस समय पर्याप्त मात्रा में नमी भी है, तो इस समय तोरिया की उन्नत किस्मों का चयन कर बुवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ तिल की बात करें तो तिल में इस समय पक्षी दत्ता और काली डंडी रोग की संभावना हो सकती है, दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैनको जो 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही साथ धान की बात करें तो इस समय धान की फसल जो आपकी बाली निकलने की अवस्था में है और इस समय क्योंकि हल्की बरसात का अनुमान जरूर है लेकिन बरसात कई दिन से नहीं हुई है और आगे भी संभावना कमी है, तो इस समय धान की फसल को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो धान की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें जिससे आपकी बाली शीघ्रतापूर्वक निकल सके। साथ ही साथ भाई डेयरी से हुई भी सोयाबीन की बात करें तो उसमें इस समय चक्रभंगक और सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है, दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइओफास 750 से 800 ml दवा 500 से 600 पानी घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही साथ भाई सब्जियों की बात करें तो इस समय भिंडी फलन अवस्था में तो फलछेदक कीट की संभावना हो सकती है, तथा सतत निगरानी रखें तथा दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोई 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 से 3 छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई मिर्च की बात करें तो मिर्च में इस समय चूरा भूरा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोई 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से इनका छिड़काव करते रहे। बैंगन की बात करें तो इस समय तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीवा क्रोन 1 लीटर दवा 500 से 600 पानी घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई नवरोपित फल वृक्ष जो आपने इस बरसात में लगाए हैं तो यदि उनमें आवश्यकता हो तो इस समय उनमें सिंचाई करें। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो इस समय अधिकतर पशुओं जो गाय भैंस ब्याने का समय है, अतः पशु के ब्याने के 1 घंटे के भीतर पैदा होने वाले शिशु को पर्याप्त मात्रा में यानी नवजात शिशु के भार का 1/10 भाग की खिलाएं।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर पीपी सिंह है। मैं आज आपको मुर्गियों की सीआरडी बीमारी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्दी की हल्की सी शुरुआत होने वाली है तो उस समय मुर्गियों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो सीआरडी बेसिकली है क्या? सीआरडी मुर्गियों के श्वसन तंत्र को धीरे धीरे प्रभावित करने वाली एक बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम नामक जीवाणु के कारण होती है। अब इस बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो उसके कारण सामान्य जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें खांसना, छींकना, नाक से पानी बहना तथा ब्रॉयलर मुर्गियों जो मांस के लिए पाली जाती है उनमें वृद्धि दर कम हो जाती है, उनका वजन सही से नहीं बढ़ता तथा लेयर मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उनमें अंडे की संख्या कम होने लगती है। सीआरडी बीमारी एक इस प्रकार की बीमारी होती है जो कि लंबे समय तक रहती है और मुर्गियों में खराब प्रबंधन तथा तनाव आदि कारक जब दिखाई देते हैं तब ये बीमारी दिखाई देने लगती है। सीआरडी बीमारी वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरी बीमारी के साथ मिलके भी काम करती है, उसको अपन सीसीआरडी नाम से जानते हैं। सीसीआरडी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सीआरडी बीमारी। होता क्या है, जब एक बार मुर्गी को माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम प्रभावित कर देता है तो मुर्गी का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो कमजोर हो जाता है और उस समय इकोलाई बैक्टीरिया का साथ में संक्रमण हो जाता है। जब ये दोनों संक्रमण मुर्गी को प्रभावित करते हैं तो अपन इस बीमारी को उस समय सीसीआरडी के नाम से जानते हैं। अब बीमारी के अगर फैलाव की बात करें तो बीमारी का जो फैलाव है हवा के द्वारा प्रभावित मुर्गी से जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनसे अगर अपन ने चूजे निकाले तो उन चूजों में पहुंच जाती है, प्रभावित मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में एवं प्रभावित मुर्गी के संपर्क में रखे हुए दाना, पानी के बर्तन, परिवहन के वाहन, श्रमिक इत्यादि के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। अच्छा, बीमारी के लक्षण मैंने पहले ही बताए थे कि मुर्गियों की नाक तथा आंख से पानी बहता रहता है, आंख के पास सूजन दिखाई देती है, ये एक प्रमुख लक्षण है जिस पर अपने को गौर करना चाहिए। मुर्गियों को भूख कम लगती है, सुस्त रहती है तथा शरीर भार कम हो जाता है, लेयर मुर्गी में अंडा उत्पादन कम हो जाता है और इन लक्षणों के साथ ही खांसना, छींकना, सांस लेने में कठिनाई होना तथा गले में विशेष प्रकार की आवाज दिखाई सुनाई देती है उसको अपन ट्रैकियल राल्स बोलते हैं। ट्रैकियल राल्स की आवाज जब सुनाई देती है तो द्वितीय संक्रमण के कारण ये ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है।

हाँ भैया, और देखो अभी अपन सुन रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की प्राप्त जानकारी एवं कृषि सामूहिक सलाह। तो हमारे बीच जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरविंदर सिंह और डॉक्टर पी

0: व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रोड 3,000 इंटरसिटी रोड और 436 अंतर्राज्यीय रोड विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: हाँ भैया हरो, तो जो है विराम के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में और सभी भैया को करते हैं स्वागत और चर्चा को आगे बढ़ावे से पहले देखो भैया, हमने आपसे पहले ही बात कही थी कि जो आप लोगों को जो भी जानकारी दिवाते हैं, जो भी चर्चाओं के द्वारा भेंट वार्ताओं के द्वारा बीमारियों की, जैसे हमें भैया को जिन्हें सुन के लाभ मिले उन्हें अवगत कराते रहते हैं समय समय पर। और भैया हरो देखो, ये कहावत एकदम सोले यानी सांची है कि बूंद बूंद से घड़ा भरत है। अपन लोग सभी कार्यों को ऐसे करते चले जाते हैं और पीछे की तरफ नहीं देखते हैं, यानी कि कहवे को मतलब है कि जैसे भैया रुपया और कई चीज़ें हैं, जैसे पैसा रुपया है वो पे ध्यान नहीं देते कि आगे की उनकी ज़रूरत है सो पड़ता है और खर्चा के खर्चा करत चले जाते हैं। अरे भैया कहवे को मतलब है कि बचत एक लाभ अनेक, यह बात बिल्कुल सांची है। जीवन में बचत ही बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यकता की चीज़ है। आज की बचत कल की जो है सुख सुविधा, जैसे कंठ की विद्या और गांट को पैसा कभी भी जो है बेकार नहीं जाते, हमेशा आड़े समय में काम में आते कि नहीं। अब जैसे कि हारी बीमारियाँ हम जो बीमारी को इलाज कराने हैं, पढ़ाई लिखाई है, घर मकान बनाने हैं या शादी विवाह करने हैं या ज़रूरत की जैसे चीज़ें खरीदनी है, तो भैया हरो बचत करने सभी के लिए लाभदायक भी होते हैं। जब ही तो कहते हैं कि बचत एक लाभ अनेक, तो भैया हरो हम तो हमेशा जो ही कहते हैं कि सभी को देखो अपनी आय से कम खर्चा करना चाहिए, हर चीज़ की बचत करना चाहिए। आज ऐसी ही भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं जाको विषय है, ये आज आपको जैसे हारी बीमारी हो जाते हैं तो अपने शरीर को ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो भेंट वार्ता जो है स्वास्थ्य में आयुर्वेदिक का महत्व, आज हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल मंगल और उनसे चर्चा कर रहे हैं सोहन सिंह। तो भैया आओ सुनते हैं जो भेंट वार्ता।

हाँ भैया, हरो तो जो है हम आपसे चर्चा कर रहे थे भेंट वार्ता की, जो सुनवा रहे हैं जाको वैसे है स्वास्थ्य में आयुर्वेदिक का महत्व। तो आज हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल मंगल और उनसे चर्चा कर रहे हैं सोहन सिंह। तो भैया आओ सुनते हैं जो भेंट वार्ता।

हाँ भैया, रोज जो है देवी गीत आपको सुनवा, मैया सबको दर्शन दीजियो, जगदीश प्रसाद वह सातियन की स्वर में। और भैया अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और भैया ये बात को भी आप और हैं सभी अच्छी तरह से जानत हो समझत हो कि पहला सुख निरोगी का आया। जब अपन शरीर से देखो स्वस्थ और निरोग रहते हैं तो सभी चीज़ को आनंद लेते हैं, जीवन जीवे को आनंद लेते हैं कि नहीं। अब और जैसे हमारी भारत सरकार भी द्वारा जो है भरपूर प्रयास करो जा रहा है कि सभी लोग स्वस्थ रहें निरोग रहें, जैसे कि हमारे बच्चे बूढ़े युवा महिला पुरुष सभी को जीवन जो है स्वस्थ नीको चलत रहे। तो भैया हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से चौपाल के से चर्चाओं के द्वारा जो है अवगत कराते रहते, समय समय पे जो है हरी बीमारियों के बारे में बताते रहते, जैसे हमें सभी भैया जो है कार्यक्रम को आनंद लेवें, स्वस्थ और निरोग रहें। और भैया देखो अपने खान पान को ध्यान रखें, जैसे जो है शरीर जब हष्ट पुष्ट होते हैं तो भैया देखो काम भी समय पर करते हैं, चाहे खेती बाड़ी को होवे, चाहे अपने रोज़मर्रा को होवे, चाहे अपने जैसे धंधे व्यवसाय को होवे, सभी कार्य जब ही अपन समय पर कर पाते हैं, जब अपन शरीर से हष्ट पुष्ट स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं। और भैया देखो जो है जीवन में जो है जब आदमी हारी बीमारियों से दूर होता है, कोनो रोग राय नहीं होती शरीर में, तो सीधी सी बात है कि सभी जो है काम भी पूरे करते रहते हैं समय पे। और सभी जो है बा आदमी की जो है चाहना अंदर से जो रहता है कि अरे भैया जो काम करना है तो तुरंत बा को करते है। तो हम तो जो ही कहें कार्यक्रम को सुनत रहें, चौपाल को जाई प्रकार से आनंद लेते रहें, और सभी भैया ने देखो समय हो रहा है चलबे को, तो हम तो सभी भैया ते लेते हैं विदा। तो सभी भैया को जो है राम राम, जय जवान जय किसान।

0: आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ। ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है, वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया। और आपने स्वच्छता की जिक्र किया, वहाँ जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का, वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनकी बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं। और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया, पूरा 6.5 लाख उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज, ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं, सेकेंड फेज में वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था
1: जी।
2: और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया, सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है। लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
3: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, या जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
4: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा

0: प्रबंधन सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा, कोई छिल के निकले, तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है, और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गीला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा, जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचड़ा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल उन्होंने बनाया है जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और वो स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा
1: जी।
2: भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी

0: नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
0: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा RWA की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं ऐसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रिस्पांस जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी हो के लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई हैं, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारा शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में, और 2017 में नंबर एक पर आ गया, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है, तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया, तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ, तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ हमने देखा कि अभी भी वहाँ समस्याएं हैं, तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सब ने मिलकर काम किया, तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं, तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरे बात पर अभी चले गए हैं, लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है, जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे, और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है, वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है, तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना, और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था। और वो प्लेग क्यों हुआ था? सफाई नहीं होने के कारण। उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंभा की बात है। और लगता है कि

0: भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर। वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होंगे कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बुलाया जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है। रास्ता सही है, लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है,
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है, सफाई शिक्षा से आता है। घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉर्पोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें 2-3 बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे।

0: अगर कचरा प्रबंधन जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 158,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 131,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो आप सोचे कि हम फिर जो हमारा कचरा है जिसको हम कचरा कहते हैं वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए, और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है
1: जी।
0: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में सोच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टेब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
2: हाइजीन का कॉन्सेप्ट, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है तीनों चीज। इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगेगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए। ये सब चीजों को मानना पड़े, तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा, खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड किया जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
2: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस। जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ, एयर, वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से। एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गाँव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है।

0: क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
1: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती है।
0: ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
1: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपीई किट मिलना चाहिए। और वहाँ अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसमें गवर्नमेंट ने भी उसमें जो नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिये मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितने उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करे, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गाँव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी जैसे लाल किले को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
2: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है। और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल क्या जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारी चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
0: बिल्कुल लक्ष्य जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए?
2: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर, हमारा दफ्तर, हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा। जितना निकले कम निकले, और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
0: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
1: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गांव के लिए नहीं, मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
2: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
0: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यही समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा की 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय था स्वच्छता से सम्मान तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए तीन देवियां फिल्म से ये गीत गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। मजरूह के बोल हैं, एसडी बर्मन का है संगीत।

अगली आवाज सुनिए लता मंगेशकर की फिल्म अनपढ़ से, जिसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और मदन मोहन का संगीत है।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
2: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
4: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन,

0: सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
1: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
4: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। X पर @AIR News, हिंदी को फॉलो करें

0: और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: आईएमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
3: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
4: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया।

0: नियाग सेरिंग नाम के आल और दर्शन बेन जरदोश को माविन इंचार्ज बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज मुकर्र किया गया है और जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को माविन इंचार्ज बनाया गया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि वोटर फहरिस्तों की नजरसानी समेत सभी फैसले मुत्तफिका तौर पर किए गए हैं। कमीशन ने मुतला किया कि उसने मुतादिद फैसले किए, तकरीबन 40 नए इकदामात मुतारिफ कराए और मुल्क भर में हालिया महीनों में वोटर फहरिस्तों के खुसूसी तफसीली नजरसानी समेत कई इंतखाबी इसलाहात अंजाम दी। कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी इदारे में नजरियात और मुशाहिदात का अलग अलग होना एक मामूल की बात होती है और कतई फैसला करने से पहले फैसला साजी के अमल का ये एक हिस्सा है। उसने कहा कि कमीशन का हर अफसर इंतखाबी निजाम को बेहतर बनाने के खातिर कमीशन को अपनी तजावीज देने के लिए पूरी तरह मजाज है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, विदर्भ और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम और माहे और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। उधर खलीज बंगाल के ऊपर हवा का गहरा दबाव शिमाली आंध्र प्रदेश, जनूबी उड़ीसा साहिल की जानिब बढ़ रहा है और इसके आज रात साहिल पार करने का इम्कान है। हवा के दबाव का आज रात और कल सुबह सवेरे के दौरान कलिंगापट्टनम के नजदीक रुख करने का इम्कान है, जिसके नतीजे में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। उड़ीसा इंतजामिया ने सूरत हाल से निमटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। आफा से निमटने की टीमों को तैनात कर दिया गया है और सैलाब के खतरे वाले मुतादिद जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
1: जनूबी और साहिली उड़ीसा के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कोरापुट, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर और मलकानगिरी मुतासर इलाकों में शामिल हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने जनूबी उड़ीसा के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आला तरीन सतह की तैयारी करने की हिदायत दी है। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई हैं। हसास इलाकों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकिस को बंद कर दिया गया है, जबकि मुतासर इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के आबोहवा में तब्दीली और तवानाई के वजीर क्रिस बोविन से मुलाकात की। जनाब बोविन तुर्की में इस साल 9 से 10 नवंबर के दरमियान होने वाली COP31 मुजाकरात के सदर भी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फीजी में अनकरीब होने वाली कॉप से पहले के मुजाकरात और तुर्की में होने वाली COP31 के कलीदी मामलात पर अहम तबादला ख्याल किया। मकानात और शहरी उमूर से मुतालिक वजारत ने आज नई दिल्ली में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया। ये तकरीब आयुष की वजारत की जानिब से मुल्क भर में मनाए जा रहे यौम आयुर्वेद के हिस्से के तौर पर मुनाकिद की गई। आज जापान के आईची एशियन गेम्स 2026 में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में चीन से 1-3 से हारने के बाद कांसे का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन इफ्तिताही मैच में शियुकी से 21-16, 21-18 से हार गए। इससे पहले सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दिफाई आलमी चैंपियन लियांग वी केंग और वांगशेंग को 21-11, 22-20 से हराया। इस तरह कांसे का तमगा जीतने के बाद भारत के कुल 12 तमगे हो गए हैं, जिनमें सोने का 1, चांदी के 5 और कांसे के 6 तमगे शामिल हैं। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने दावा किया है कि उनके अवाम अमरीका की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर रहे हैं। सदर पजिश्कियान ने मरहूम रहबरे आला अली खामनेई और जंग के शुरुआती दिनों में हलाक हुए 150 से ज्यादा स्कूली बच्चों की तस्वीर ले रखी थीं। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमरीका के फैसले पर अपने मफादात और तश्वीश को दोहराया है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सेटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
3: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पे उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं, तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहाँ ये कार्ड काम नहीं आता है?
3: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहाँ जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है, ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है, आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन OTP के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्यून पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है NHA के IT सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है। और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें है, इसमें शामिल है। कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेज हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेज इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
2: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
3: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है जो रोबस्ट सिस्टम है और इसके 4 मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1-4-555 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ली है। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
2: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है और 21 सितंबर 2026 तक 48,51,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13,25,00,000 अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है
0: और अब आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी स्टाफ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह चार स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़ 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव ना करना पड़े।
2: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है, लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे? कैसे?
3: चार माध्यम रखा है जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि शिकायत भी कर सकता है। तो शिकायत के लिए भी ये चारों चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है। क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कंप्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपए की भी मांग की जाती है तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे, ताकि ये पता चला किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपए भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
2: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
3: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड है। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट है। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल है, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है, हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे, और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना

0: का उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले हैं उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पे हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में चार स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा। एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में, उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है ताकि वहां से हम सारे इंफॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज के क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड हैं वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
1: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका ये भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है, एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और दो तीन पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में दो और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट चार जगह लगाए हैं या एक ही लेंस चार जगह लगाए, वो पकड़ना जरूरी है।
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई। या कह लीजिए डबल विनिंग।
0: हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे

0: केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 times तक उस पर पेनल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन FIR भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स है, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और AI का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं, और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको OCR टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है, वैल्यू बहुत कम है। तो अब हम लोगों ने AI को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th year में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी, लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है, और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जा करके इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये PMJ के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: सर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है, कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है। अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था। 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन IT एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Intensity, integrity and intelligence. These are the three I's which the Indian contingent needs at the Asian Games, and they have been displaying these attributes with their tremendous performances. Hello and welcome to the Asian Games Aichi Nagoya 2026 report on Akashvani. My name is Abhinav Punchi and I'll be taking you through all the action from the Asian Games today. And here are the headlines. It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starring with the silver, ending her Asiad medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asiad silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
3: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
2: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
4: Roshabina Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
2: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jayameena won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Meena's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He is speaking exclusively on Akashvani.
5: बिल्कुल बिल्कुल भरोसा था और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Time now to head to the shooting range where Shahid Azmi has a report from a mixed day for the Indian contingent.
6: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लोन, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लोन भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लोन, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
2: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
6: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव से खेलेंगे।
2: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
4: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manusha and Diachitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
2: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्टियोम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं के व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी।
2: The Indian men badminton team were trying to create history today. Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
4: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11,

0: 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India were in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
2: Bharatiya Mahila team ka mukabla Iran se hua aur Bharatiya team ne ye match 37-23 ke antar se apne naam kar liya. Mukable ke pehle half mein Bharat 19-15 se aage tha. Dusre half mein Bharatiya khiladiyon ne defending aur raiding dono mein behtar talmel dikhaya aur badhat ko lagatar mazboot kiya. Is jeet ke saath Bharatiya Mahila team ne group stage mein lagatar dusri jeet darj ki. Ab baat karte hain भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की. पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की. भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया. पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी. इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की. बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा. वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी. इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है.
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
0: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया. भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे. इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं. यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है. हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया.
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
0: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है. एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे. साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड.
0: India's men's kayak 4-500 meter team finished

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए कीर्ति दुबे की आवाज में उपशास्त्रीय गायन का। पेश किए जाएंगे राग झूला, ठुमरी मिश्र खमाज और चैती मिश्र पहाड़ी। सबसे पहले आनंद लीजिए राग झूला का।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का OIC को

0: कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुस्मनिक्तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-US bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. US President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no local stand-by to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons SAT-SAAW along with associated equipment for Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. The delivery of SAT-SAW is scheduled between 2027-2028 and 2028-2029. SAT-SAW is an air-to-ground precision guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk and Su-30 MKI and has the capability to neutralize enemy airfields from a long standoff range. Indigenously designed and developed by DRDO, the system will have an indigenous content of 60% along with indigenation of subsystems like initial measurement unit, long impact delay fuse and twin stow carrier to further boost self-reliance in defense. The Election Commission has said that all the decisions including the electoral roll revision were taken unanimously. The Commission informed that it has taken numerous decisions, introduced around 40 new initiatives and undertaken many electoral reforms including special intensive revision in the recent months across the country. The Commission emphasized that difference in views and observations are a normal part of deliberation in any institution and it is a part of the decision-making process before taking a final decision. It said every officer of the Commission is fully authorized to give his suggestions to the Commission for improving the electoral system. In Rajasthan, a major fire broke out at a chemical factory in Jodhpur today evening, with at least 13 fire brigade personnel injured in an explosion during firefighting efforts. The fire spread rapidly as drums of an inflammable chemical stored at the premises caught fire, triggering multiple explosions, police said. Around 10 fire tenders rushed to the spot. While firefighters were trying to control the blaze, an explosion occurred in one of the chemical drums, leaving at least 13 fire brigade personnel with burn injuries. The injured were taken to hospital. India's men's badminton team won the bronze medal after losing 1-3 to China in the semi-final at Aichi, Japan today. With this win, India's medal tally has risen to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. Union Home Minister Amit Shah congratulated the Indian men's badminton team for their performances at the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।